मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी वाराणसी है, 6 बजने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार दिए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की

0: शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में नींबू वर्गीय पौध लगाएं विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम नींबू वर्गीय फलों की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। नींबू वर्गीय फलों में माल्टा, संतरा, कागजी नींबू, लेमन और ग्रेपफ्रूट आते हैं। इन फलों के सफल उत्पादन के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इन फलों की सफल बागवानी के लिए नीचे की मिट्टी की बनावट और गहराई विशेष महत्व रखती है। नीचे कंकड़ की तह नहीं होनी चाहिए तथा भूमि का जल स्तर नीचा होना चाहिए, जिससे उचित जल निकास हो सके। यदि मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा हो तो इससे पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है। अब बात आती है पौध तैयार करने की। नींबू वंश के पौधे तैयार करने की सबसे प्रचलित विधि चश्मा चढ़ाना है, जिसमें टी आकार के चश्मे की सफलता सबसे अधिक होती है, जिसे बसंत ऋतु में या जुलाई अगस्त माह यानी इस समय 1 वर्ष पुराने बीजू पौधे पर मनपसंद किस्म की गोल स्वस्थ आँख जिसे कली कहते हैं चढ़ाकर पौध तैयार की जाती है। जब पौध तैयार हो जाती है तो उसको लगाने के लिए पहले खेत को भली भांति जोत कर तैयार कर लेते हैं। इससे खेत में कोई खरपतवार न रहे और जमीन समतल हो जाए। बाग लगाने का सर्वोत्तम समय बरसात का मौसम है, अतः आप पहले तैयार की गई भूमि पर रेखांकन करें। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी दोनों 6 मीटर रखते हैं। रेखांकन कर लेने के बाद 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी को एक तरफ तथा नीचे की आधी मिट्टी को दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे की भराई करते हैं। ऊपर की मिट्टी 20-25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, लगभग 70 ग्राम लिंडेन चूर्ण मिलाकर गड्ढे को इस प्रकार भर देते हैं कि गड्ढे के ऊपर तक मिट्टी उठी रहे। फिर उसमें पानी दे देते हैं जिससे मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। इसके बाद पौधे की रोपाई करते हैं। रोपाई करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पौधा ऐसे समय लगाना चाहिए जब न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा बरसात और न ज़्यादा ठंडक हो। पौधा गड्ढे में उतनी ही गहराई पर लगाना चाहिए जितना गहराई पर वह पौधशाला में था, तथा चश्मा किया हुआ स्थान जमीन से ऊपर होना चाहिए। पौधा लगाने के बाद जड़ों के आसपास की मिट्टी खूब अच्छी तरह दबा देनी चाहिए तथा पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी दे देना चाहिए। फिर पौधे की देखभाल करते रहना चाहिए। जब पौधा 1 साल का हो जाए तो उसमें खाद एवं उर्वरक देने की आवश्यकता

0: पड़ती है। नींबू वर्गीय पौधे रोपने के बाद उसे सही प्रकार देने की भी आवश्यकता होती है। इसकी छटाई इस प्रकार करनी चाहिए कि जमीन से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक कोई शाखा न रहे। फिर इस ऊंचाई के ऊपर समान दूरी पर 3-4 शाखाओं का चुनाव करें जो चारों दिशाओं में विकसित हों। अन्य शाखाओं को काटकर निकाल देना चाहिए। जो शाखाएं एक दूसरे के ऊपर बढ़ रही हों, रोगग्रस्त हों या अन्य किसी कारण से सूख गई हों, उन्हें भी काटकर हटा देना चाहिए। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना। जब पौधा 1 साल का हो जाता है तो 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 ग्राम यूरिया, 312 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 167 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। इस मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट करके आधी मात्रा फरवरी माह में और आधी मात्रा सितंबर के महीने में देना चाहिए। फिर दूसरे साल इस मात्रा का 2 गुना मात्रा प्रयोग करते हैं। तीसरे साल मात्रा बढ़ाते जाते हैं और 10 साल तक 1 साल के पौधे को जितना उर्वरक देते हैं उसकी 10 गुना मात्रा प्रयोग करते हैं। इन पौधों के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध भी आवश्यक है। गर्मियों के दिन में 10 से 15 दिन के अंतर पर तथा जाड़ों में 4-5 सिंचाई आवश्यक है। वर्षा ऋतु में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, फूल निकलते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए वरना फूल झड़ जाते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर नींबू वर्गीय वृक्ष लगाने चाहिए।
1: नींबू वर्गीय पौध लगाएं विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। निवेदित हैं भक्ति रचनाएं आराधना के अंतर्गत।

आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, यही हमारी उस भोले भंडारी से कामना है।

आराधना के अंतर्गत आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। इस कार्यक्रम में जिन गायक कलाकारों ने अपना स्वर दिया वो थे अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल और जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:25 हुए हैं। आइए सुने साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन व प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 142वीं कड़ी।

मजदूरों की बात को आगे बढ़ाने से पहले यहां आश्रम की झांकी कर लेना आवश्यक है। चंपारण में रहते हुए भी मैं आश्रम को भूल नहीं सकता था, कभी कभी वहां हो भी आता था। कोचरब अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव है, आश्रम का स्थान इस गांव में था। कोचरब में प्लेग शुरू हुआ। आश्रम के बालकों को मैं उस बस्ती के बीच सुरक्षित नहीं रख सकता था। स्वच्छता के

नियमों का अधिक से अधिक सावधानी से पालन करने पर भी आसपास की अस्वच्छता से आश्रम को अछूता रखना असंभव था। कोचरब के लोगों से स्वच्छता के नियमों का पालन कराने की अथवा ऐसे समय में उनकी सेवा करने की हम में शक्ति नहीं रही थी। हमारा आदर्श तो ये था कि आश्रम को शहर अथवा गांव से अलग रखें, फिर भी वो इतना दूर न हो कि वहां पहुंचने में बहुत कठिनाई हो। किसी न किसी दिन तो आश्रम को आश्रम के रूप में सुशोभित होने से पहले अपनी जमीन पर खुली जगह में स्थिर होना ही था। प्लेग को मैंने कोचरब छोड़ने की नोटिस मांगा। श्री पूजा भाई हीरा चंद आश्रम के साथ बहुत निकट का संबंध रखते थे और आश्रम की छोटी बड़ी सेवा शुद्ध और निराभिमान भाव से करते थे। उन्हें अहमदाबाद के कारोबारी जीवन का व्यापक अनुभव था। उन्होंने आश्रम के लिए जमीन की खोज तुरंत ही कर लेने का बीड़ा उठाया। कोचरब के उत्तर दक्षिण के भाग में मैं उनके साथ घूमा, फिर उत्तर की ओर 3-4 मील दूर कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसका पता लगाने की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने आज की आश्रम वाली जमीन का पता लगा लिया। वो जेल के पास है, ये मेरे लिए खास प्रलोभन था। सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले के भाग्य में तो जेल ही लिखा होता है। अपनी इस मान्यता के कारण जेल का पड़ोस मुझे पसंद आया। मैं ये तो जानता ही था कि जेल के लिए हमेशा वही जगह पसंद की जाती है जहां आसपास स्वच्छ स्थान हो। कोई 8 दिन के अंदर ही जमीन का सौदा तय कर लिया। जमीन पर न तो कोई मकान था न कोई पेड़। जमीन के हक में नदी का किनारा और एकांत, ये दो बड़ी सिफारिशें थीं। हमने तंबुओं में रहने का निश्चय किया और सोचा कि रसोई घर के लिए टीन का एक काम चलाऊ छप्पर बांध लेंगे और धीरे धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे। इस समय आश्रम की बस्ती बढ़ गई थी। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष थे। सुविधा ये थी कि सब एक ही रसोई घर में खाते थे। योजना की कल्पना मेरी थी, उसे अमली रूप देने का बोझ उठाने वाले तो नियमानुसार स्वर्गीय मगनलाल गांधी ही थे। स्थायी मकान बनने से पहले की कठिनाइयों का पार नहीं था। बारिश का मौसम सामने था, सामान सब 4 मील दूर शहर से लाना होता था। इस निर्जन भूमि में सांप आदि हिंसक जीव तो थे ही, ऐसी स्थिति में बालकों की सार संभाल का खतरा मामूली नहीं था। रिवाज ये था कि सर्पादि को मारा न जाए, लेकिन उनके भय से मुक्त तो हम में से कोई नहीं था और आज भी नहीं है। फिनिक्स टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम, तीनों जगहों में हिंसक जीवों को न मारने के नियम का यथाशक्ति पालन किया गया है। तीनों जगहों में निर्जन जमीनें बसानी पड़ी थीं। कहना होगा कि तीनों स्थानों में सर्पादि का उपद्रव काफी था। इस पर भी आज तक एक भी जान खोनी नहीं पड़ी। इसमें मेरे समान श्रद्धालु को तो ईश्वर के हाथ का, उसकी कृपा का ही दर्शन होता है। कोई यह निरर्थक शंका न उठावे कि ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्य के दैनिक कामों में दखल देने के लिए वो बेकार नहीं बैठा है। मैं इस चीज को, इस अनुभव को दूसरी भाषा में रखना नहीं जानता। ईश्वर की कृति को लौकिक भाषा में प्रकट करते हुए भी मैं जानता हूं कि उसका कार्य अवर्णनीय है। किंतु यदि पामर मनुष्य वर्णन करने बैठे तो उसके पास तो उसकी अपनी तोतली बोली ही हो सकती है। साधारणतः सर्पादिकों को न मारने पर भी आश्रम समाज के 25 वर्ष तक के बचे रहने को संयोग मानने के बदले ईश्वर की कृपा मानना यदि वहम हो तो वो वहम भी बनाए रखने जैसा है। जब मजदूरों की हड़ताल हुई तब आश्रम की नींव पड़ रही थी। आश्रम की प्रधान प्रवृत्ति बुनाई के काम की थी। कातने की तो अभी हम खोज ही नहीं कर पाए थे, इसलिए पहले बुनाई घर बनाने का निश्चय किया गया। इससे उसकी नींव चुनी जा रही थी।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन व प्रस्तुति थी अरुण पांडेय की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 6:40 हुए हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। 6:50 और 45 सेकेंड्स हुए हैं कार्यक्रम विवरण में। आइए जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। शास्त्रीय संगीत में सुबह 7:31 पर सुनिएगा अक्षत प्रताप सिंह का गायन, और दोपहर 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा आदित्य विजय भंडारी का गायन। एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस दिन में 11 बजे से आप सुन पाएंगे। झनकार का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे से। मधुरिमा का आनंद लीजिएगा सुबह 8:45 पर, जो होगा सदाबहार फिल्मी गानों पर आधारित। सुगम संगीत में दोपहर 12:30 पर और रात्रि 8 बजे कलाकार होंगी रजनी मिश्रा। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर महिलाएं चर्चा के अलावा सुनेंगी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्रोफेसर कल्पना आनंद की वार्ता के अलावा गीत संगीत।

युवाणी शाम 5:15 पर जिसमें होगी आज की बात, शाम में गजल, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे ओम प्रकाश यादव, राजलक्ष्मी और राजेंद्र त्रिपाठी। इसके अलावा लोकगीत प्रस्तुत करेंगे रामावत सिंह यादव साथी। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका। लोक संगीत में सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे राम जन्म भारती और दिन में 1:45 पर कलाकार होंगे राधे श्याम सोटा वाले बसाते।

दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुनेंगे। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5 बजे, 6:10 पर, 7:31 पर रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी के जरिए। हम एक बार आपको पुनः याद दिला दें, आज शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: bananas.
1: नमस्कार बनारस। गंगा की लहरों पर आज सिर्फ सूरज की किरणें नहीं चमकी हैं, बल्कि आज बनारस की हवाओं में उस आजादी का गौरव और आने वाले कल का जज्बा लहरा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के सभी कर्मवीरों, सपने देखने वालों और उन्हें सच करने वालों का हौसला रखने वालों को आपकी दोस्त शिखा का सादर नमस्कार। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी हैं और ये वक्त है बनारस की सुबह को सबसे एनर्जेटिक और पॉजिटिव शुरुआत देने का। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। आज तारीख है 14 अगस्त, दिन है शुक्रवार। दोस्तों, आज की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। आज की ये सुबह गवाह है उस महाउत्सव की पूर्व संध्या की, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने सपनों को बुन रहे हैं, तो इसके पीछे उन लाखों वीरों की शहादत है जिन्होंने देश के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या हम सिर्फ कैलेंडर बदलने पर आजादी मनाएंगे, या हर दिन अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, उन बलिदानियों ने हमें स्वतंत्रता तो दिला दी, लेकिन खुद को मानसिक और वैचारिक रूप से स्वतंत्र बनाना आज हमारी जिम्मेदारी है। असली आजादी क्या है? आजादी अपने भीतर के डर से, आजादी मुझसे नहीं होगा वाली सोच से, आजादी आलस से, और आजादी है हर उस बेड़ी से जो आपको अपने सपनों की उड़ान भरने से रोकती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने इरादों का पक्का होता है, इतिहास उसी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखता है। अगर सीमाओं पर खड़े सिपाही का हौसला अटूट है, तो खेत में काम कर रहे किसान और सुबह सुबह अपने काम पर निकलने वाले हर बनारसी का जज्बा भी किसी सिपाही से कम नहीं होना चाहिए। आज 15 अगस्त की इस पूर्व संध्या पर अपने भीतर की उस आस को जगाइए। उठिए, कमर कसिए और पूरी एनर्जी के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाइए। आज का दिन आपका है और इसे आगे इतिहास के पन्नों में लिखते देखना भी आपके हाथ में ही है। जब मोटिवेशन की बात आती है ना, तो हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी काशी की मिट्टी में ही वो बात है जिसने इतिहास को बदला है। याद कीजिए, इसी बनारस के भदैनी में घाटों की गोद में जन्मी थी एक बेटी मणिकर्णिका। इसी मिट्टी में खेल कूद कर उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। जब वक्त आया तो वही बनारस की

बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों की काल बन गई और आजादी की पहली लड़ाई की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। और याद कीजिए, इसी काशी की धरती पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी की थी। एक ऐसा इंसान जो बेहद साधारण और गरीब परिवार से था, लेकिन इरादे इतने फौलादी थे कि आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री बने और जय जवान जय किसान का नारा देकर पूरे देश में एक नई चेतना फूंक दी। सोचिए, जिस मिट्टी में ऐसे महापुरुषों और वीरांगनाओं के कदम पड़े हों, उस मिट्टी के वासी होकर हम और आप या कोई भी बनारसी भला हार कैसे मान सकता है। हम उस शहर के बाशिंदे हैं जहां बाबा विश्वनाथ का डमरू बजता है और डमरू की वो थाप हमें सिखाती है कि जब तक आपके भीतर हौसले की धड़कन बाकी है ना, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो अपनी पूरी ऊर्जा को समेटिए और आज के इस दिन को नई शुरुआत दीजिए। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस।

दोस्तों, जब भी आजादी की लड़ाई का जिक्र होता है तो इतिहास के पन्नों पर बनारस का नाम सोने के अक्षरों में चमक उठता है। आज मैं आपको ले चलूंगी साल 1942 के अगस्त महीने में, जब महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे ने पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। तारीख थी 10 से 13 अगस्त 1942। बनारस में कानून और व्यवस्था की सीमाएं इतनी सख्त कर दी गई थीं कि शहर एक फौजी छावनी में बदल चुका था। ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ जैसी पाबंदियां लगा दी थीं। धारा 144 लागू थी। सड़कों पर संगीने ताने अंग्रेज सिपाही मार्च कर रहे थे और 5 लोगों के एक साथ खड़े होने पर सीधे जेल या फिर गोली का हुक्म था। अंग्रेजों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अपने कड़े सैन्य नियंत्रण में ले लिया था। चप्पे चप्पे पर हथियार बंद फौज तैनात थी। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि कानून के इस खौफ से बनारस थम जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि ये महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया है और बनारस की रगों में गुलामी नहीं बगावत बहती है। कानून के उस जानलेवा पहरे, बंदूकों और लाठियों को चीरते हुए बीएचयू के जांबाज छात्र अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़े। ब्रिटिश फौज की गोलियों का खौफ उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों की आंखों में आंखें डाली, भारी सुरक्षा घेरे को तोड़ा और यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रशासनिक भवन से यूनियन जैक को उखाड़ फेंक कर शान से भारत का तिरंगा फहरा दिया। कानून और व्यवस्था का दंभ भरने वाले अंग्रेज देखते ही रह गए। और दोस्तों, जब बनारस के जज्बे की बात हो तो हम राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के योगदान को कैसे भूल सकते हैं। वो सिर्फ एक सेनानी नहीं बल्कि इस क्रांति के सबसे बड़े स्तंभ थे। जब अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की आवाज दबाने के लिए प्रेस पर पाबंदियां लगाई, तब बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने बनारस से आज अखबार की शुरुआत की, जिसने आजादी की अलख जगाने में बारूद का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी के विचारों को जीवित रखने के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का गुप्त ठिकाना और गढ़ बन गया। जब भी आजादी के मतवालों को आर्थिक मदद की जरूरत होती, गुप्त जी अपनी तिजोरी खोल देते। उन्होंने न केवल कानून की बेड़ियों को तोड़ा बल्कि अपनी पूरी संपत्ति देश के नाम न्योछावर कर दी। आज जब हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो घाटों की इन लहरों में उन शहीदों, जांबाज छात्रों और बाबू शिव प्रसाद गुप्त जैसे मनीषियों का अक्स साफ नजर आता है। बनारस सिर्फ मस्ती और मोक्ष की नगरी नहीं है, ये देश के लिए सब कुछ मिटा देने वाले मतवालों का गढ़ भी है। सलाम है बनारस की उस क्रांतिकारी माटी को, सलाम है यहाँ के वीर सपूतों को। आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस, क्योंकि यहाँ यादें भी हैं और जज्बा भी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। बनारस वालों के लिए मानसूनी जलभराव से राहत देने वाली बहुत बड़ी खबर आई है। BLW और वाराणसी नगर निगम ने शहर के जलभराव की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 45.30 करोड़ रुपए के साझा प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत बरेका पहाड़ी गेट से चितईपुर रोड तक 14.2 किलोमीटर लंबी आधुनिक ड्रेनेज प्रणाली बनाई जाएगी। इस मॉनसून के बाद काम शुरू हो जाएगा, जिससे चितईपुर, भिखारीपुर और बरेका के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को जल जमाव की आफत से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज पूरी काशी तिरंगे के रंग में डूब चुकी है। शहर के प्रमुख चौराहों, लंका, गोदोलिया और सभी 84 घाटों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर शहर में कई जगहों पर मौन जुलूस और संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग विभाजन के दर्द को याद कर बलिदानियों को नमन कर रहे हैं। बनारस आने वाले और घाटों की सैर करने वाले थोड़ा सा सावधान हो जाएं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दशाश्वमेध, असी और मणिकर्णिका घाट समेत कई प्रमुख पक्के घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घाटों का

आपस में संपर्क टूट गया है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 90% नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने लोगों को पानी के पास न जाने की सख्त चेतावनी भी दी है। बनारस और पूरे पूर्वांचल के लिए मेडिकल जगत से एक बेहतरीन अपडेट है। बीएचयू अस्पताल में पूर्वांचल की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट बनने जा रही है। अब दिल की बीमारियों से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, उन्हें बाबा की नगरी में ही बेहद कम खर्च पर विश्व स्तरीय इलाज मिल सकेगा। सावन के महीने और कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। कैंट, बनारस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीमें डॉग स्क्वाड के साथ लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। शहर के सभी होटलों, लॉज और धर्मशालाओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस से आज की सबसे बड़ी सांस्कृतिक अपडेट है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न को दोगुना करने के लिए बीएचयू प्रशासन आज 14 अगस्त से 4 दिवसीय विशेष सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता महोत्सव शुरू कर रहा है। इस आयोजन में देश की विभिन्न लोक संस्कृतियों, देशभक्ति नाटकों और देश की अखंडता पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। बनारस की सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आज शासन की तरफ से एक और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कचहरी से संधा वाया आशापुर मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण करने के लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की प्रारंभिक अधिसूचना को मंजूरी मिल गई है। इस सड़क के चौड़े होने से सारनाथ और गाजीपुर की तरफ से आने वाले बनारसियों का घंटों का सफर मिनटों में बदल जाएगा। और अगर आप कल यानी 15 अगस्त को घर से बाहर निकलने वाले हैं तो वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जारी इस लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी को बहुत ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप जाम में फंसने से बच सकें। कल सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर के कई रूट पूरी तरह से बदले रहेंगे। लहुराबीर से मैदागिन की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के सामान्य 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों का प्रवेश सुबह से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये रूट केवल वीआईपी और पास धारक वाहनों के लिए आरक्षित होगा। गोदोलिया से चौक और मैदागिन की तरफ जाने वाले मार्ग पर किसी भी कमर्शियल वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। आम जनता को पैदल या केवल पास वाले वाहनों से ही जाने की छूट होगी। रथ यात्रा से सिगरा और लहुराबीर जाने वाले वाहनों को कमच्छा और भेलूपुर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। अब जान लेते हैं कि 14 अगस्त की क्या है खासियत इतिहास के पन्नों में। यही वो दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। 1908 में इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1968 में मुरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित हुए थे आज के ही दिन। 1971 में बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी आज के ही दिन। 1938 में बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ प्राग टेलीविजन पर प्रसारित हुई थी। तो ये थी इतिहास में 14 अगस्त की खासियत। अब इसी के साथ शिखा को दीजिए इजाजत कार्यक्रम को संपन्न करने की। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कानपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे।
3: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अभियान के तहत कल कानपुर देहात जिले में एक विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की।
5: कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। अयोध्या में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं बस्ती जिले में वहां की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भदोही जिले में भी राजेंद्र बर्नवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हर घर तिरंगा निकाली गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।

0: बाराबंकी में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। वहीं प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
1: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कल से सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। मंदिर से जुड़े धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है।
2: नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत्र वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र होगा। खास बात यह है कि यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होगा, बल्कि बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। उस दौरान ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होगा, लेकिन वस्त्र का रंग पीत ही रहेगा। समिति का मानना है कि इस बदलाव से मंदिर की पूजा व्यवस्था में एकरूपता तथा अनुशासन और मजबूत होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया। इससे पहले संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। गोरखपुर की जिला स्वास्थ्य समिति DHS ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी गोरखपुर के CMO डॉक्टर राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि समिति वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्रदेश में अव्वल रही है।
4: हम लोग के DHS को इस बार 2025-26 में भी रैंक वन मिला है, और ये रैंक वन मिलना जो है वो अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। इसका मतलब जो हम लोग अपना जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हैं, वो बैठक हम लोग सही तरीके से करते हैं।
0: प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कई जिलों में कल मध्यम से लेकर तेज बारिश हुई। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंदौली

जिले के एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में कल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी वाराणसी की इकाई द्वारा मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुगल सराय के विधायक रमेश जायसवाल ने किया। इसमें मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग और डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पीआईबी के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में आइए सुने अक्षत प्रताप सिंह का गायन। राग है भोपाल तोड़ी। आपके साथ तबले पर हैं ज्ञान स्वरूप मुखर्जी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे अक्षत प्रताप सिंह का गायन। राग था भोपाल तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ज्ञान स्वरूप मुखर्जी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। सब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

0: भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डन और मेट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर

0: direct benefit transfer DBT or of central bank digital currency CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा शांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खिराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आजाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को खत्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आजादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का अहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनजर रैली के लिए इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकामात पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकामात के जरिए

0: वहशियात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगामात की तशहीर की जाएगी। कल यौम आज़ादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मदु किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावाराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई, जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निकार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
1: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
2: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गांव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदाम कर रहे हैं।
1: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है, जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर

0: मगरिब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरक शिमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेरे असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरिबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमीन के मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और सीबीआई जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आजादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नजर रांची जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवीं नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतिमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमरीका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नजर, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मौजूद फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफे पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई।

यह है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई, जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा शांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। यह वक्त है सदाबहार फिल्मी गानों को मधुरमा के जरिए पेश करने का। कार्यक्रम का आगाज करें, सुनवाएं आपको पहला गाना। आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658,
11: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: మధురిమా ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ మధురిమా
1: सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा में आपका स्वागत। पहला गाना नीरज का लिखा, सचिन देवबर्मन ने इसके धुन तैयार की है, किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म है शर्मीली।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है महबूब की मेहंदी।

आइए सुने दोस्ती फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आइए सुनते हैं गज़ल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

अब आइए सुनते हैं प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गाना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, एस एच बिहारी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और यही है कार्यक्रम मधुरमा की आखिरी पेशकश।

0: से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में अपने दौरे के दौरान करीब 489 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने कहा कि उस समय ना तो बेहतर सड़कें थी और ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। फतेहपुर जिले में भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में हर जिले का समान रूप से विकास करना है।
3: विकास की योजना की बात होती है, सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है।
2: फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अगुवाई में अपराध के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जुलाई महीने में पुलिस द्वारा 66 गुंडा एक्ट, 3 गैंगस्टर, 9 हिस्ट्रीशीटर और 4 गैंगों का पंजीकरण कराया गया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 सातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि
4: जो हमारी फतेहपुर पुलिस है उसमें जो आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमने 66 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे गुंडा की चलानी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी के साथ साथ 3 गैंग्स पे हमने गैंग्स की कार्रवाई करवाई है। कुछ लोग हमने इसमें पकड़े भी हैं, निरुद्ध भी करे हैं। उसके साथ साथ इनकी जो अवैध संपत्ति है उनका भी चिन्हांकन करके जो अदाय की इसमें कार्रवाई की जाएगी।
2: इस महीने 17 अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले में कुल 64 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 12,000 गौवंशों के रहने खाने व मेडिकल की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत गंगवार के मुताबिक जनपद में मौजूदा समय 64 गौ आश्रय स्थल संचालित है जिसमें 46 अस्थायी गौशालाएं हैं।
5: फतेहपुर में कुल हमारी इस समय वर्तमान में 64 गौ आश्रय स्थल संचालित है जिसमें हमारे 46 अस्थायी गौ आश्रय स्थल है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 काजी हाउस हैं, 2 कान्हा हाउस हैं एवं वृद्ध गो आश्रय स्थल हमारे 13 हैं, जिनमें सभी 64 गो आश्रय स्थलों में हमारे 12,000 गोवंश संरक्षित हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में जल भराव एवं उसकी निकासी हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी भी हमारे केवल 2 गौ आश्रय स्थलों में जहां पानी की समस्या कुछ शेड में आ गया था उसको हमने पानी का निष्कासन दिया गया है।
2: जिलाधिकारी के निर्देश पर जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। फतेहपुर जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जलंधर रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। करीब 33.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। पूर्ण विकास के बाद फतेहपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म थे जिन्हें बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवागमन, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवजात शिशुओं का केक काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनकी माताओं को किट का वितरण भी किया एवं एक पौधा भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल धरोहर हैं। आज की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, चिकित्सा और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना तथा महिला एवं बाल कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक बेटी को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचे।
1: फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
6: चित्रकूट में

0: प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 84 करोड़ रुपए लागत वाली 31 परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें 15 परियोजनाएं अकेले चित्रकूट की हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में प्रयागराज चित्रकूट, बांदा चित्रकूट और कौशाम्बी चित्रकूट मार्ग पर थीम आधारित प्रवेश द्वार, बेड़ी पुलिया से शंख चौक तक पर्यटन विकास, रामघाट पर कथा स्थल और तुलसी घाट पर आरती स्थल सहित कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। परानु बाबा आश्रम, मानिकपुर के लैना बाबा मंदिर, मारी माता मंदिर और बोड़ी पोखरी के सौंदर्यीकरण तथा हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य भी प्रस्तावित हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ चित्रकूट की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक की निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए लागत से परंपरा वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटकों को एक ही स्थान पर पर्यटन संस्कृति और विरासत से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मिल सकेंगी। चित्रकूट में औद्योगिक विकास की नई राह खुलने जा रही है। रामसैया के पास हरसौली, रानीपुर, खाकी और संग्रामपुर गांवों में करीब 50 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। करीब 3 साल के इंतजार के बाद सामने आए इस प्रस्ताव को चित्रकूट के साथ पूरे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों के साथ MSME इकाइयों को भी स्थापित किए जाने की योजना है। प्रशासन की कोशिश है कि हिंडाल्को, NTPC और NCL जैसे बड़े औद्योगिक समूहों के निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ कारोबार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग चिन्हित भूमि का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और पहुँच मार्ग समेत जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
1: जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि जो जनपद मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंतर्गत हो उसे ढूंढा जाए, जहाँ पे इस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सकता है। और उसके लिए राम शैलिया भूमि जो है चिन्हित की गई है, उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव शीघ्र तैयार करके उसे शासन भेजा जाएगा।
0: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान 2026 जोश व उत्साह के साथ जारी है। अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1,20,000 राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण और वितरण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध तरीके से ध्वजों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा गुणवत्ता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। 9 अगस्त से शुरू है यह आयोजन, 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वंदे मातरम का गायन कर सकते हैं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी डिजिटल अभियान में साझा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। राजकीय जिला पुस्तकालय में संचालित इस कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क मार्गदर्शन और अध्ययन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्र 2025-26 में 301 विद्यार्थियों के पंजीकरण के मुकाबले नए सत्र 2026-27 में 360 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
1: हमारे यहाँ इस समय भी पंजीकरण पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अभी भी कोई बच्चे चाहते हैं तो वो प्रवेश यहाँ पे कर सकते हैं। सभी परीक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने प्रयास किया है कि सबसे बेहतर टीचर्स को होंगे। हर एक टीचर को यहाँ इंटरव्यू किया गया है। आप सबके लिए ही ये कोचिंग आयोजित की जा रही है। अच्छी शिक्षा मिले उद्देश्य यही है।
0: कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से नियमित रूप से 8 से 10 घंटे अध्ययन करने, सोशल मीडिया से अनावश्यक दूरी बनाए रखने और इंटरनेट का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करने का आह्वान किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे जनपद प्रयागराज से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है ए अर्जुनन, इनके पिता का नाम है के वेदाचनम, ये निवासी हैं मिकापुरम सेकेंड स्ट्रीट तिरुवल्लिकेनी चेन्नई के। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 55 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, चेहरा गोल है, रंग सांवला, काले घने बाल। ए अर्जुनन के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज या कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे जनपद प्रयागराज को देने की कृपा करें। ये लापता हुए हैं 27 अगस्त 2025 रात 10:30 बजे से। ए अर्जुनन के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो कृपया करके कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे जनपद प्रयागराज को दें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ये सूचना आई है, लापता विलुप्त व्यक्ति का नाम है अमृता सिंह, इनके पति का नाम है उमा शंकर सिंह, ये निवासिनी हैं सवैदा महलवार थाना शहाबगंज जनपद चंदौली की। अमृता सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा है, चेहरा लंबा है। ये लापता होने के समय हरे रंग की साड़ी, पैर में काला चप्पल पहने हुए हैं। घटना की तिथि 23 अक्टूबर 2025। अमृता सिंह के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को देने की कृपा करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही एक और सूचना है। ये खोए हुए व्यक्ति का नाम है प्रभु नारायण, इनके पिता का नाम है हरिराम प्रजापति। ये निवासी हैं ग्राम हरिशंकरपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली के। ये पिछले 21 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे से लापता हैं। प्रभु नारायण के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 65 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ। प्रभु नारायण के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को देने की कृपा करें। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुईं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, योम आज़ादी हर कौम की तारीख का वो दरख्शा बाब है जो कुर्बानी, जद्दोजहद, अज़्म और हौसले की लाजवाल दास्तान सुनाता है। कल मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, जिस पर पेश की मुबारकबादी कबूल हो। दोस्तों, बिलाशुबा 15 अगस्त का दिन हमें उन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें एक आज़ाद वतन अता किया। ये दिन जश्न मनाने के साथ साथ अपने माजी को याद करने, हाल का जायजा लेने और मुस्तकबिल के लिए अज़्म नो करने का दिन भी है। सामीन, आज अहदे हाजिर अपनी तेज रफ्तार तब्दीली, साइंसी तरक्की, डिजिटल इनकलाब, माहौलियाती चैलेंजेस और समाजी तब्दीलियों का अहद है। ऐसे हालात में आज़ादी का मफहूम सिर्फ सियासी खुद मुख्तारी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका ताल्लुक कौमी किरदार, समाजी जिम्मेदारी, आइन व कानून का एहतराम, तालीम, अखलाक, इत्तिहाद और कौमी यकजहती से भी जुड़ जाता है। लिहाजा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम मुल्क के कवानीन का एहतराम करें, कौमी वसाइल की हिफाजत करें, फिरका वराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब को फरोग दें, माहौलियात के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करें और अपनी दयानतदारी, मेहनत और खिदमत के जरिए मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। खास तौर से नौजवान नस्ल पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इल्म, तहकीक, इख्तिरा और मुस्बत फिक्र को अपना सरमाया बनाएं और हिंदुस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली की नई मंजिलों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है अहदे हाजिर में योम आज़ादी और हमारी जिम्मेदारियां। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा और साथ ही साथ मशहूर शायर जनाब यासीन इब्न उमर साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमर। हम सबसे पहले अपने दोनों खसूसी मेहमान का आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमीद व ताखीर डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा से सवाल है। हुमा साहिबा, अहदे हाजिर में आज़ादी का क्या मफहूम है? आज़ादी के मफहूम में क्या कोई तब्दीली आई है? आज के दौर में एक जिम्मेदार शहरी होने के तकाजे क्या क्या हो सकते हैं? हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत फरमाएं।
2: सबसे पहले तो शुक्रिया मोहम्मद उमैर साहब, आपने मुझे इनवाइट करा आज के प्रोग्राम के लिए और मैं हिंदुस्तान के तमाम साथियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पेश की मुबारकबाद, कल 15 अगस्त है तो तमाम साथियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक जो सवाल उमैर साहब ने मुझको करा है, मैं कहना चाहूंगी कि आज़ादी का मतलब तो एक तरह से देखा जाए, उस वक्त जब हमें आज़ादी मिली तब जो हमारा इमीडिएट कंसर्न था वो था अंग्रेजों से आजादी। लेकिन तब से अब तक हम ये देखते हैं कि जो हमारा जब आईन तश्कील हुआ तो उसमें जो बातें रखी गईं, वो तमाम लोग जो आईन को लिखने में लगे और खास तौर पे उसकी जो कहना चाहिए लीडरशिप रही है हमारे डॉक्टर बीआर अंबेडकर साहब के हाथों में, तो जो तमाम बातें हमारे आईन में लिखी गई, मैं सोचती हूँ वो इतने विजनरी लीडर्स थे कि उन लोगों ने जो बातें उस वक्त जो उन्होंने सोची वो आज भी हमारे लिए एकदम हकीकत है। और अगर हम उन तमाम चीजों का पास रखें जो उसमें हमारे आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से हम लोग दूर रह सकते हैं।
1: तो बहुत उम्दा बात आप कह रही हैं कि आज आज़ादी का मफहूम सिर्फ सियासी खुद मुख्तारी तक महदूद नहीं है, बल्कि तालीम, तरक्की, मसावत, इजहार राय, आईन का एहतराम और जिम्मेदार शहरी होने से भी हुआ।

0: वस्ता है। एक जिम्मेदार शहरी कानून की पाबंदी करता है, कौमी यकजहती को फरोग देता है और मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करता है। ये तमाम बातें आप कह रही हैं अपनी बातों में, बहुत ही उम्दा बात आपने कही है। अभी कौमी यकजहती की आपने बात कही तो एक सवाल यहाँ पर कौमी यकजहती पर मजीद करेंगे कि कौमी यकजहती फिरका वराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत बनाने में आम शहरी तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों का क्या किरदार है या वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, और मैं कहूंगी कि यही उसकी एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। और इस तरह की गंगा जमनी तहजीब और इस तरह की एक नेशनल इंटीग्रेशन की मिसाल हमें शायद किसी और दूसरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं मिलती है। तो इसके लिए तालीमी इदारे बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो आज के दौर में तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी हम लोगों का नया सेशन शुरू होता है तो उसमें एक दीक्षारंभ प्रोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम हमेशा इस तरह का शेड्यूल और सिलेबस में भी हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं इस तरह की चीजें कि जिसमें कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करें। हम अपने तालिब इल्मों को ये सिखाएं कि अमन और तमाम पीस और इस तरह की चीजें जो वैल्यूज हैं, जिनको हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, तो उनको अगर हम इम्पार्ट करते हैं, हम अपने तालिब इल्मों को देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चल करके ना सिर्फ ये कि वो जो भी कोर्स कर रहे हैं वो उसको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से करेंगे, बल्कि उनका एक सामाजिक ढांचे को भी हम सुधार सकते हैं और आगे चल करके वो ना सिर्फ ये कि जिम्मेदार शहरी बनेंगे बल्कि अपनी जो भी उनकी फील्ड है उसमें भी वो आगे चल करके आला मकाम हासिल करेंगे। और इसी तरह से जो कौमी तंजीमें हैं या और दीगर इदारे हैं, वो तमाम लोग बहुत मेजर रोल अदा कर सकते हैं हमारे जो तालिब इल्म है या हमारा जो एक नौजवान तबका है उनको सही रास्ता दिखाकर।
0: तो बहुत उम्दा बात आपने कही कि आम शहरी मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम को फरोग दें, तालीमी इदारे अखलाकी कौमी तालीम पर खास तौर से तवज्जो दें, जबकि समाजी तंजीमें मुख्तलिफ तबकात को करीब लाने और उनकी सरगर्मियों को मजीद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ एहतमाम करें ताकि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को मजीद तरक्की मिले। यही तमाम चीजें कौमी इतिहास को मजबूत से मजबूत तर करेंगी। ये बात आप कह रही हैं, बहुत ही उम्दा चीजें आपने यहाँ पर पेश की हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वक्फा लेंगे। इस वक्फे में हमारे साथ मशहूर शायर जनाब यासीन इब्न उमर तशरीफ रखते हैं। हम शायर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि योम आज़ादी के हवाले से चंद अशार पेश फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया उमर साहब। सबसे पहले तो तमाम सामईन को और मुल्क के तमाम हमारे भाई बहनों को मैं योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी हवाले से चंद अशार हाजिर करता हूँ

0: बहुत खूब, बहुत ही उम्दा आपने अपने कलाम को पेश किया। अभी आप यासीन इब्ने उमर साहब का कलाम समाअत फरमा रहे थे। हम फिर अपने प्रोग्राम की तरफ वापस पलटते हैं और हमारे साथ में डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा यहाँ पर तशरीफ फरमाए। एक सवाल और हुमा साहिबा से लेंगे। हुमा साहिबा, नौजवान नस्ल पर आज़ादी की हिफाजत और मुल्क की तरक्की के हवाले से कौन सी अहम जिम्मेदारियाँ इस वक्त आयद होती हैं? इस सिमत में उन्हें कैसे तैयार किया जा सकता है, इस पर आप रोशनी डालें।
1: अभी जो यासीन साहब बहुत उम्दा कुछ चंद अशार पेश कर रहे थे और खास तौर पे जो मेरे दिल को छू गई वो लाइन ये थी कि जो दिलों को जोड़ दे उस ज्ञान की बातें करो।
0: बहुत खूब।
1: तो मैं सोचती हूँ कि मौजूदा नस्ल को सबसे जरूरी ये है कि हम उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन दें, कि ऐसा इल्म दें कि जिससे कि वो आगे बढ़ें, और न सिर्फ ये कि खुद आगे बढ़ें बल्कि हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को और आला काम पर पहुंचाएं। तो बस जरूरत इस बात की है कि हम इन नौजवानों को हम सही रास्ता दिखा सकें, हम ये बता सकें कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारा ही मुल्क है कि हमको इसको आगे बढ़ाना है। और जैसे कि आपने शुरुआत में बात करी थी माहौलियात की, कि बहुत ज्यादा सबसे बड़ी जो आज एक हमारे लिए कंसर्न है वो है क्लाइमेट चेंज की। हम बातें करते हैं, हम ये देख रहे हैं किस तरह से चीजें हमारे जो एनवायरमेंट को असर कर रही हैं।
0: तो बहुत उम्दा बात आप नौजवानों के ताल्लुक से कह रही हैं कि नौजवानों को तालीम, तहकीक, हुनर, दयानतदारी और मेहनत को अपना शियार के तौर पर देखना चाहिए और इसमें अपना वक्त उनको लगाना चाहिए। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल वो करें, कौमी अकदार को अपनाएं और मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें, तो ये नौजवान नस्ल के लिए आपने बहुत ही उम्दा बात कही है। एक और यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आप भी देख रही हैं कि डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर के अंदर कैसे हम आगे तरक्की कर सकते हैं, इस पर एक सवाल है कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया राय आम्मा की तश्कील का एक मौसर जरिया बन चुका है। इसके मुस्बत इस्तेमाल के जरिए हुब्बुल वतनी, कौमी शियार और जिम्मेदार शहरी होने के एहसास को किस तरह मजीद फरोग दिया जा सकता है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: उमर साहब, आपने जैसे फरमाया कि इस डिजिटल दौर में हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही मजबूत एक मीडियम है जिसके जरिए हम चाहें तो बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कभी कभी होता ये है कि हम लोग बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से कोई बात ऐसी लिख देते हैं जिसका गलत असर समाज के ऊपर पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने जो नौजवान लोग हैं उनको इस चीज के बारे में एजुकेट कर सके कि हमें किस तरह से डिजिटल दौर में किस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, ताकि जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके।
0: तो बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर दुरुस्त मालूमात, कौमी कामयाबियों, आईनी अकदार, समाजी हम आहंगी और मुस्बत पैगामात को आम किया जाए, उसको फैलाया जाए, जबकि अफवाहों, नफरत अंगेज मवाद और गलत इत्तलास से बचा जाए, इज्तिनाब किया जाए, तो ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार हो सकते हैं डिजिटल दौर के ताल्लुक से। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ फिर एक और वक्फा लेंगे और यासीन इब्ने उमर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अपना एक कलाम मजीद पेश फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया उमर साहब। इसी हवाले से मैं एक नज्म हाजिर करना चाहूँगा। नज्म का उन्वान है ऐ मेरे हिंदुस्तान।
0: जी।

0: हिंदुस्तान।
1: बहुत खूब, बहुत ही उम्दा ए मेरे हिंदुस्तान। अभी आप समाज फरमा रहे थे यासीन इब्ने उमर साहब से। अभी फिर हम अपने उसी प्रोग्राम की तरफ फिर से वापस आते हैं जहां हम योम आज़ादी के ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रही हैं डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा। एक और आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि आपके नज़दीक अगर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को पूरी दयानतदारी के साथ में अदा करता है तो हिंदुस्तान को आप किस शक्ल में देखती हैं आने वाले वक्त में, और आज हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, वजाहत फरमाएं।
2: मैं सोचती हूँ कि आज के वक्त में अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने हुकूक को भी जाने, क्योंकि इल्म हासिल करने का मकसद ही यही होता है कि हमें ज्यादा आगाही हो हर चीज की कि हमारे हुकूक क्या हैं और हमारे फराइज क्या हैं। और आज का पैगाम भी मेरा तमाम लोगों के लिए यही है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, एक दूसरे के लिए दिल में जगह रखें। यही मेरा पैगाम है आज के।
1: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर शहरी अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा करता है तो हिंदुस्तान आगे चलकर तरक्की याफ्ता शक्ल में दिखाई देगा। यहाँ पर आखिरी मर्तबा हम यासीन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हुब्बुल वतनी पर अपना कलाम पेश फरमाएं।
3: जश्न आज़ादी के हवाले से चार मिसरे देखें। त्योहार पुर बहार है ये 15 अगस्त, एक जश्न शान

0: अगस्त एक जश्न शानदार है ये 15 अगस्त।
1: सामिन, अभी आप यासीन इब्ने उमर साहब से 15 अगस्त के हवाले से एक कलाम समाअत फरमा रहे थे। सामिन, आज के मुबाइसे का लुब लुबाब निचोड़ यही है कि योम आज़ादी सिर्फ माजी की कुर्बानियों को याद करने का दिन नहीं बल्कि हाल का एहतसाब और मुस्तकबिल की तामीर का अहद भी है। आज़ादी की हकीकी हिफाजत सिर्फ सरहदों पर नहीं होती बल्कि हर शहरी के किरदार, दयानतदारी, कानून की पासदारी, कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और अपने फराइज की अदायगी से होती है। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान मोहतरमा डॉक्टर हुमा याकूब साहिबा और जनाब यासीन इब्ने उमर साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। सुबह के 9:50 हुए हैं। लोक संगीत हम लेकर आएंगे जिसमें आज के कलाकार हैं राम जन्म भारती, उनसे हम सुनेंगे देशभक्ति गीत, लेकिन ये छोटा सा संदेश के पार।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: लोक संगीत में आपका स्वागत। आज के कलाकार हैं राम जन्म भारती। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये देशभक्ति गीत।

इसी देशभक्ति गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आज के कलाकार थे राम जन्म भारती। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं सुबह की

अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में रंग फिल्म का गाना। रचना समीर की है, नदीम श्रवण ने इसकी धुन तैयार की है।

दिल परदेसी हो गया। आइए सुने इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, सावन कुमार की रचना, उषा खन्ना का संगीत।

ज़माना दीवाना, आइए सुने इस फिल्म का गाना। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

अब आइए सुने आशा भोसले और कुमार सानू की युगल स्वर में जान तेरे नाम फिल्म का गाना। रानी मलिक का, रानी मलिक की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: यूपी 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
1: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
0: यूपी 112 की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
1: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
0: यूपी 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
2: अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। मीडियम वेव के मीटर पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। दिन के 11 बज रहे हैं, सुनेंगे आपका अपना फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बस कुछ ही पलों में।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज है दिन शुक्रवार का। ऊपर वाले का शुक्राना अदा करते हुए आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ आरंभ करते हैं ये प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपके व्हाट्सएप संदेश पर आधारित फरमाइशी

गीत, जिसमें आपको फिल्मों के गीत सुनने के लिए भेजना है अपने नाम और पते के साथ संदेश, तो हम आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905519981। तो भेज दीजिए संदेश, सबसे पहले हम आपको गीत सुनवाएंगे, उसके बाद आप उस गीत के लिए हमें संदेश भेजेंगे। तो हम आपको बताते हैं आज हमने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के लिए आपको गीत सुनवाने हैं उनके नाम है पूरब पश्चिम, धरती कहे पुकार के, आशा, बहू बेगम, फरार और निगाहें। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरब पश्चिम, धरती कहे पुकार के, आशा, बहू बेगम, फरार और निगाहें। तो आपको संदेश भेजना है, लेकिन सबसे पहले आप इस गीत को सुनेंगे और इस गीत को सुनने के बाद ही आप संदेश भेजेंगे, और उसी गीत सुनने के बाद उसी फिल्म के लिए संदेश भेजें, नहीं तो नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं और नाम छूट जाता है। तो सुनवाते हैं हम आपको पहला गाना फिल्म पूर्व पश्चिम से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर और मनहर उदास की आवाज़ में। संतोष आनंद का गीत है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

पूरब पश्चिम फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर और मनहर उदास की आवाज़ में। इस गीत के लिए बहुत सारे श्रोताओं का हमें संदेश प्राप्त हो चुका है, चलिए उनके नाम बता देते हैं। फतिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदपुर से जुनेद मुजावर, शाजी मुजावर, मिखाइल जुनेद मुजावर, इन्होंने हमें ये संदेश भेजा, इनके लिए शुक्रिया। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष रजा, चैतन मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना का ये संदेश मिला। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञ संघई, प्रीतेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार, इन्होंने शुक्रिया लिखा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्रपति संभाजी महाराज से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल राजेश, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। पश्चिम सिंह भूमि चईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांग गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। ये संदेश आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबेराही, मिराज जहां का आजाद नक्सर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से, नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। ये हमें संदेश मिला है हरियाणा से, ये हमें संदेश लिख रहे हैं रवि कौशिक, रमेश कोठारी, इन्होंने ये हमें संदेश लिखा है। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, घमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल का ये संदेश हमें मिला है। जमनिया जिला गाजीपुर से अभी हमने आपका संदेश शामिल कर लिया है। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर का ये संदेश प्राप्त हुआ। श्रवण कुमार, राजकुमार, लवप्रीत गुजरात गुरजात, बिंड कुलारा तहसील सहलकोट डिस्ट्रिक्ट झारखंड पंजाब से ये हमें संदेश भेजे हैं। छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा का ये संदेश प्राप्त हुआ। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का ये संदेश मिला। ये संदेश है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायरा शर्मा, निवान शर्मा का। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु अरवण, अरणव आनंद और सत्यमानंद का। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का ये संदेश प्राप्त हुआ। गुरमीत सिंह मीता ये साउथ दिल्ली से हमें संदेश भेज रही हैं। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर, साखरबाई कंगड़कर, परमेश्वर रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कंगड़कर परिवार ने हमें संदेश भेजा।

धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ततरंगी भाटपाड़ा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा का ये संदेश मिला है। ये संदेश हमें मिला है पटियाली रोज गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एमएस खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा का ये संदेश मिला। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने हमें लिखा है। उन्होंने लिखा है माई रेडियो माई लाइफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांव धुंधला ओसिया जिला जोधपुर राजस्थान से गणेश मेघवाल, चंपा मेघवाल, मधुबाला विवेक, पीयूष मेघवाल का ये संदेश प्राप्त हुआ इसी गीत के लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का ये संदेश हमें मिला है। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया का। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राज जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमार प्रणाली देशमुख, कुमार सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। आपके बहुत सारे संदेश हमें इस फिल्म के लिए आए हैं। ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। सुनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल का ये संदेश मिला है। खमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार, चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म धरती कहे पुकार से लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

धरती कहे पुकार के फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को। इस गीत के लिए भी हमें बहुत सारे श्रोताओं ने संदेश भेजे हैं, उनके नाम बताते चले हैं आपको। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बिरडी से, नाना लाम से, मीना लाम से, तेजल ताम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से का ये संदेश मिला। समजी मंडी बुल डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा और आयजा अनम का ये संदेश मिला। गोला बाजार बक्सर से सदानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद, राजा बाजार बीहे आरा से सुरेश केशरी का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू का ये संदेश मिला इसी गीत के लिए। अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा का ये संदेश मिला। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमड़े से ये संदेश हमें मिला है। अमितेश कुमार तिवारी हमें लिख रहे हैं करनाई बलिया से, इसी संदेश के लिए संदेश भेजा है उन्होंने। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह का ये संदेश प्राप्त हुआ। राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन, मनोज सेन का ये संदेश हमें मिला है। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से ये संदेश हमें मिला है। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, वाणी खेड़ा और बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त खेड़ा परिवार ने हमें ये संदेश भेजा है। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि अनुराग, दीप भगेलू यादव, मास्टर राम, समुच यादव का ये संदेश हमें मिला है। वलीदपुर मढ़हा मऊ उत्तर प्रदेश से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का ये संदेश मिला। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का संदेश मिला है। ये संदेश आया है जिला झारखंड बड़ा बॉम्बे सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती और प्रकाश तांती का। छज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया भाटिया का संदेश मिला है इसी गीत के लिए। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह ने संदेश भेजा है और लिखा है गांव लोहखट ठाकुरावाला से। इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश हमें मिला है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता कौड़ का। सविता पटेल नारायणपुर यूपी कॉलेज से भी ये संदेश हमें भेज रही हैं। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू ने संदेश लिखा है। लिखा है प्लीज प्लीज मेरा गाना शामिल करें, नाम शामिल करें, आपका नाम शामिल हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा

मार्ग दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना का ये संदेश हमें मिला। सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान का संदेश मिला। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का संदेश मिला। इन्होंने लिखा है, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी का संदेश मिला। श्रोताओं, निवेदन है कि एक बार आपका नाम शामिल हो जाए तो कृपा करके बार बार ना अपना नाम भेजें, क्योंकि अन्य लोगों को भी शामिल करने का प्रोग्राम में मौका दें। दिल्ली से ये संदेश आया है, लाल रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने ये संदेश हमें भेजा है, दिल्ली शहर मोरी से, मोरी गेट से कन्हैया लाल ने हमें ये संदेश भेजा था। मदरसा गेट भावपुर मणियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद और अजरा तबस्सुम का। रायपुरा ने जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन का संदेश प्राप्त हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आशा से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा फिल्म से लिए के लिए जिन श्रोताओं ने हमें संदेश भेजा उनके नाम बता दे। तकिया मड़िया हूँ से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद रोमिंग शाह, मोहम्मद हसरत शाह, मोहम्मद साजिद शाह, मोहम्मद आबान शाह, रामलीला मैदान मड़िया हूँ जौनपुर से, निगार बानो, राहत जहाँ, रहनुमा बानो, रोशन जहाँ, शाइस्ता नाज, हिना बानो का ये संदेश मिला। गांव कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से सचिन, कडवासरा सतीश, योगेश और युधव कडवासरा का ये हमें संदेश प्राप्त हुआ। आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। मजनू का टीला से, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ का ये संदेश है। ग्राम भोईना पार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता चुलबुली, गीतिका चंचल रानी साहू, प्रियांक त्रियांश कुमार साहू ने हमें ये संदेश भेजा था। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। ये संदेश है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियांक मोदी, बरका काना से नजनीन, तबस्सुम अफजल इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तकार इब्राहिम का ये संदेश है। ये संदेश है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध का संदेश प्राप्त हुआ। दीदार बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुनेसा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान का ये संदेश है। इन्होंने शुक्रिया लिया कहा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निम पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक का ये संदेश मिला। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, इन्होंने शुक्रिया लिखा है, आपका भी शुक्रिया। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिधा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवदीत राय का ये संदेश है। श्रोताओं गुजारिश है, एक बार संदेश भेजें तो बार बार ना भेजें। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी पंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और वीकेपुरी और विनोदपुरी का ये संदेश मिला इसी गीत के लिए। मुटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार नरगिस खातून ने हमें संदेश भेजा था जिला मुरादापार ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका श्रीनिजा ने ये संदेश हमें भेजा था जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। ऊपरी कोला ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, जान अब्बासी, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का ये संदेश मिला। आनंद मिश्रा, ममता मिश्रा शिवपुर वाराणसी से हमें संदेश भेज रहे हैं। पूनम यादव, कुसुम यादव, माता पिता मोकुलपुर मरियाहू जौनपुर से हमें इन्होंने संदेश भेजा था। जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार हमें ये संदेश भेजा है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से।

ये संदेश है रंजीत प्रसाद सुधीर शुक्ला डम देवेंद्र साहू बामरा जिला संबलपुर ओडिशा से। अब कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बहू बेगम से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज है। साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

बहू बेगम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। और इस गीत के लिए हमें बहुत सारे श्रोताओं ने संदेश भेजे, उनके नाम बता दे। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और रेखा गुप्ता का ये संदेश है। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े, कुमारी प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े और हागोड़े परिवार, इन्होंने धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति करौता वाराणसी से हमें संदेश भेजे हैं। परवणी गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, राम देवरा से दिनेश चौहान ने हमें ये संदेश भेजा था। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरान, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा का ये संदेश है। बुलंदशहर से एमएस अब्बासी और अब्बासी पूरा परिवार, इन्होंने ये संदेश भेजा है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का ये संदेश हमें आया है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से। आम खोरडा रेंगा खार जिला कबीरधाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया गीत सरगम का नेताम का ये संदेश मिला है। ये संदेश है मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद, बदरुद्दीन अंसारी, बड़े दिन धरा से इन्होंने ये संदेश भेजा है और साथ में है अनाउल हक अंसारी भी। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी, बेबी अरीबा, हबीबा, शुक्रिया आपने संदेश भेजा है। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। सब्जी मंडी बुलडाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा और आयजे आनम का ये संदेश है। आशा सुमन कुमार प्रजापति ये हमें संदेश भेजे हैं। बलिया उत्तर प्रदेश से ये संदेश है। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जमा मस्जिद रोड गोंगवा से हाजी इश्ताक लोलामनी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया लिखा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहाड़गंज मुल्तारी ढांडा से अनिल मोहक, उषा मोहक, टिल्लू नायक और मधु नायक का ये संदेश है। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मारावी, प्रमिला मारावी, नेहा मारावी, पुष्पराज मारावी, ऋषभ मारावी का ये संदेश है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने संदेश भेजा है। आपने नमस्ते लिखा है, आपको भी बहुत नमस्ते। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का ये संदेश है। जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हमें ये संदेश भेजा है। हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शाहिद हसन आजमी, शमीम अख्तर अंसारी का ये संदेश है। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने ये संदेश भेजा था। तंगौरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगौरी, जसपीर कौर, महिकप्रीत कौर और साहिब साहिजत प्रीत सिंह का ये संदेश था। ये संदेश है कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू का। आशीष कुमार महरेव जौनपुर से हमें इसी गीत के लिए संदेश भेजा था इन्होंने। ये संदेश है तेलंगाना काठगोदाम डिस्ट्रिक्ट से राजेश खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानुराज खन्ना, अमित खन्ना और अम्मी, इन्होंने साथ में लिखा है सेव वाटर सेव लाइफ। बहुत सुंदर संदेश है ये संदेश है।

सूरज चौधरी, मोनी बाबा धाम, चिचकपुर बाजार, जिला गाजीपुर से। साथ में है राम कलश चौधरी। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम और अमजद अली का संदेश प्राप्त हुआ। ये संदेश है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी काना, मती मनोहर, बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इनका है एड्रेस है लाल माता सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालवाड़, राजस्थान से। निहारिका श्रीवास्तव चेतगंज वाराणसी से हमें संदेश भेज रही हैं इसी गीत के लिए। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक ने संदेश हमें भेजा है। ये संदेश है गोलघर कोठा बिहार से बिलाल बम्बैया मोहम्मद हलील खान का। अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म फरार से। किशोर कुमार की आवाज है राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है कल्याण जी आनंद।

फरार फिल्म से अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को। इस गीत के लिए हमें जिन श्रोताओं ने संदेश भेजा उनके नाम बता दें। सिंगार तलाई खंडवा मध्य प्रदेश से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव और भारती यादव का। कृष्णा कौली हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिंगलानी, बबीता मिंगलानी, इन्होंने धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नलेश्वर नगर बरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवल।

कर, निर्मला नवलकर, विशाल नवरकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइगे, हर्षित हर्ष आशीष मोहकर, इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया फिल्म के लिए इन्होंने संदेश भेजा था। ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद वर्मा का संदेश मिला। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, ज्योति ठाकुर का संदेश मिला। चरोदा पार नावपारा अभयारण्य जिला बालोद बाजार छत्तीसगढ़ से। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का ये संदेश हमें

मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का ये संदेश हमें मिला था। टैगोर टाउन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का संदेश मिला। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदर, पांडुरंग कुमार का संदेश मिला। कुमार गली काले कोलगांव से इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत धन्यवाद। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अक्रम हुसैन प्रिंस का ये संदेश मिला। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान का हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से संदेश प्राप्त हुआ। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा का संदेश मिला। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना का लदावली जिला मुरादाबाद से संदेश मिला है। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी का संदेश मिला है। ये संदेश मिला है, आई एम फ्रॉम, इन्होंने लिखा है आई एम फ्रॉम बनारस, माई फेव फरमाइशी सॉन्ग हम आपको सुना चुके हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा है। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा अजमीन गुड़िया का संदेश मिला है तेलंगाना भोंगीर से। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी का ये संदेश है। साबिया खान, अनस खान, सकील खान, दानियाल खान, फूले नगर, आंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र से ये हमें संदेश भेजे हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, हमने आपका नाम शामिल कर लिया है इस कार्यक्रम में। तेलंगाना से गजा रिजाउद्दीन, गजा फासीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबैरा, इन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका भी बहुत धन्यवाद। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, लिव पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश मिला। विनीशा दुबे, दिव्यांशु दुबे, श्रेयांशु दुबे और का संदेश मिला है हमें आजमगढ़ से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का ये संदेश प्राप्त हुआ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल डिक्रेस्टो और विलिस डेक्रोस्ट्रो का संदेश मिला है, आपने लिखा है, तहे दिल से शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब, माफ कीजिएगा, आप लिसनर्स क्लब के नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ पता लिखना है। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबाना और यश मंसूरी का ये संदेश है। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश खान का ये संदेश है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, जयपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह का ये संदेश है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। ये संदेश है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोर घट से और विनोद खट से का। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का संदेश प्राप्त हुआ। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन का ये संदेश है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, आपका हम संदेश शामिल कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। मौसीम अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी, कोटवा बनारस से हमें इन्होंने संदेश भेजा है। कार्यक्रम में हम आपको और भी एक गीत सुनवाएंगे, फिल्म निगाहें से मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म निगाहें से मोहम्मद अजीज की आवाज में, और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें संदेश भेजे उसके नाम आपको बताते चलें। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान का ये संदेश है। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र रौनक सेन का ये संदेश मिला। नेहरू चौक पैठड़ डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिल जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव ने हमें संदेश भेजा है। जलाना शहर से सोमना जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, इन्होंने धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद सोलंकी, आतिफा खान और रियाज खान का ये संदेश है। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद और अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का ये संदेश है। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा का ये संदेश है। मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, आपका नाम हम शामिल कर चुके हैं। महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदार नगर से अकलूराम केदार राम और

दीनानाथ सिंह का ये संदेश है। स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जयसवाल, डिंपल जयसवाल, आशुतोष जयसवाल, अभिनव जयसवाल का ये संदेश है। आपका भी नाम हम शामिल कर चुके हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांश भूषण और संस्कृति और पौरुष का संदेश मिला। रामलीला मैदान मडियाहू जौनपुर से निगार बानो, राहत जहां, रहनुमा बानो रोहन जहां, शाइस्ता नाज और हिना बानो का ये संदेश था। घनोरा विटाली से तहसील नांदुड़ा, जिला बुलाड़ा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल का ये संदेश था। मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद जमाल, दानिश जमाल और आसिफ जमाल, अनवर जमाल और सहजेब अनवर का संदेश मिला। अच्छे लाल बिंद ग्राम बागी नंदलाल, नंदगंज जिला गाजीपुर से ये संदेश हमें भेजे हैं। आनंद प्रहलाद श्रीवास्तव आईएमएस बीएचयू वाराणसी से हमें इसी गीत के लिए संदेश इन्होंने भेजा था। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, मुसाफिर चौहान और कयूम शाह का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराग बेनारा का संदेश मिला। बेवरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से शिव दयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा का संदेश मिला। तो इस गीत के साथ ही समाप्त करते हैं हमारा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त चित्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
1: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
1: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
1: श्रोताओ ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
1: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय

0: और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
1: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
1: जी।
0: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
1: जी हाँ श्रोताओ, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया।
0: जी, तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
1: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी, 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था।
1: जी।
0: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
1: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
1: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश

0: दिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
1: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
2: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
1: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
2: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
1: जैसे तुम्हारे मर्जी।
0: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई,
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
3: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जाओ, कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
0: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
6: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
6: मेरे साथियों, साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
5: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
6: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।

0: लेकिन वो कैसे?
1: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
2: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
3: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
2: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
1: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
4: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक

0: इन।
1: वल्लभ वल्लभ।
2: हाँ।
1: अरे तुमने कुछ सुना
2: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
1: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
2: हाँ?
1: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
2: क्लास से निकाल दिया?
1: हाँ।
2: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
1: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
2: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
1: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
3: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
1: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
3: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
2: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
1: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
2: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई?
1: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
2: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
1: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
2: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
1: ठीक है,
2: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
1: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
2: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
1: क्या?
2: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
1: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
2: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
1: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
4: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
5: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
4: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
6: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
7: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
6: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।

0: हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
1: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
0: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
2: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
0: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
2: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
0: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
2: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
0: जी,
2: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
0: उससे क्या होगा
2: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं?
0: हाँ।
2: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
5: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
6: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
5: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी, लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
6: नहीं।
5: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
6: नहीं।
5: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन

0: कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
1: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
2: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
3: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
2: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे सुगम संगीत। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें
11: 0542227658।
7: सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार है रजनी मिश्रा। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत। रचना है जयशंकर प्रसाद की।

अभी आप सुन रहे थे गीत, रचना थी जयशंकर प्रसाद की। आइए सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम के आखिर में एक और गीत, रचना है महादेवी वर्मा की।

अभी आप सुन रहे थे रजनी मिश्रा के स्वर में ये गीत, रचना थी महादेवी वर्मा का। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आदित्य विजय भंडारी का गायन। राग है मियां का सारंग, आपके साथ तबला संगत की है पीयूष कुमार ने।

अभी आप सुन रहे थे आदित्य विजय भंडारी का शास्त्रीय गायन, राग था मियाँ की सारंग। आपके साथ तबला संगत की थी पीयूष कुमार ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है, सुनेंगे हिंदी में समाचार बस कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने

0: की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। प्रभारी निरीक्षक सिंदौरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिभा वर्मा, पुत्री पंचू प्रसाद वर्मा निवासी हैं गांव तिलमापुर, पोस्ट सिंदौरा, थाना सिंदौरा, वाराणसी से। प्रतिभा वर्मा दिनांक 4 जून 2026 शाम 4 बजे अपने घर से कहीं चली गई थी और वापस लौटकर नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है 22 वर्ष, कद 5 फिट 6 इंच, रंगोरा है। लापता होने के समय इन्होंने सफेद रंग का सूट और मैरून कलर का सलवार और काला दुपट्टा ले रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक सिंदौरा को 9125728354 पर सूचित करें। थाना जैतपुरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद यासीन, पुत्र इकलाख अहमद वारसी, निवासी है ये A40/57K-1C अमरपुर बटलोलिया, थाना जैतपुर, जनपद वाराणसी। मोहम्मद यासीन दिनांक 22 मई 2026 सुबह 10 बजे से अपने घर से लापता हो गए थे। इनके बारे में जानकारी की बात इस प्रकार है। उम्र है 60 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला। लापता होने के समय इन्होंने ग्रे रंग की लुंगी और चेक शर्ट पहन रखी थी। इनके हाथ में चोट का निशान है और होंठ पर सफेद रंग का दाग है।

इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना जैतपुरा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। अब आइए एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश सुनेगा शाम 7 बजे और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का संदेश सुनेगा शाम 5:10 से, जिसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आदित्य विजय भंडारी का गायन सुनेगा रात्रि 10:30 पर। विज्ञान पत्रिका सुनेगा रात्रि 10 बजे से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनेगा रात्रि 9:30 पर। रजनी मिश्रा के गाय की सुनेगा रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य कार्यक्रमों के अलावा होगी लोक भाषा कवि गोष्ठी। आमंत्रित कलाकार होंगे ओम प्रकाश यादव, राजलक्ष्मी और राजेंद्र त्रिपाठी। इसके अलावा कार्यक्रम में होगा राम अवध सिंह यादव का गाया लोकगीत। लोकगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर सुनेगा राधे श्याम सोटा वाले और साथी का गाया देशभक्ति गीत। युवा साथी सुनेंगे युवाणी शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की बात होगी वर्षा जल संरक्षण पर, पढ़ाई और पर्सनल लाइफ बैलेंस पर। साथ ही शाम में गजल सिने दर्पण मुख्य आकर्षण और होंगे युद्ध डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्रोफेसर कल्पना आनंद की वार्ता और साथ ही सुनेगा गीत संगीत और जायका। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रसमाधुरी रात 8:15 पर, रसरंग शाम 7:31 पर फिल्म संगीत, शाम 6:10 पर और शाम 5 बजे फिल्म संगीत का कॉम्पियर्ड प्रोग्राम एक ही कलाकार सुनेगा, जिसमें सुनेंगे सुनिधि चौहान के बारे में दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: प्रताड़ित होना पड़ा था, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक कि एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए।
1: इससे कबल तकसीम की हौलनाकी यादगारी दिन के मौके पर आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कयादत में लखनऊ के जीपीयू में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे से लोक भवन तक एक खामोश मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें तकसीम के साने को याद किया गया। इस दौरान इस दौर के दर्द और जद्दोजहद को एक नुमाइश लाइव पेंटिंग और तकसीम के साने पर मबनी एक शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाया गया, जबकि तकसीम की हौलनाकियों से मुतासर होने वाले बेघर खानदानों के अफराद ने अपने तजुर्बात से आगाह किया। हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के कई अजला में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इस तनाजुर में फतेहगढ़ फरकाबाद में पुलिस अफसरान और अहलकारों ने तिरंगा लेकर शहर के अहम रास्तों से मार्च किया, जो हुबुल वतनी इतिहास सालमियत और कौम के तई लगन का पैगाम देते हैं। दरियसना लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लाला लाजपत राय वार्ड के काउंसलर रघुराम तिवारी की क्यादत में लखनऊ में एक अजीमुशान तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। जुलूस का आगाज काउंसलर के दफ्तर से हुआ और मेहमान खसूसी मकामी एमएलए डॉक्टर नीरज बोरा ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। महकमे जंगलात की मां के नाम पर एक दरख्त मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कल रियासत के तमाम 75 अजलाम वंदे मातरम वाटिकाज कायम किया जाएगा। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दीपक कुमार ने कहा कि यह खसूसी मुहिम बड़े पैमाने पर शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाएगी।
2: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के यूपी T20 लीग का चौथा एडिशन आज से शुरू हो रहा है, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ सीजन का इफ्तिताह करेंगे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन काशी रुद्रास का मुकाबला गुजश्ता साल के रनर अप मेरठ मार्ग से होगा। इस बार मौसीकी तफरी और फूड कार्निवाल के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मानसून रियासत भर में सरगर्म है। महकमे मौसमियात के लखनऊ मरकज ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 44 अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियावेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी इस संदेश के बाद।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
7: 0542227658।
5: ओ
4: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ
4: 0542227658।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों बहनों को आपकी रेडियो दोस्त सुखदा पालंदे का प्यार भरा नमस्कार,
1: और आप सभी को शीला का प्यार भरा नमस्कार, और सुखदा आपको भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार शीला, कैसी हैं आप?
1: हम तो अच्छे हैं
0: शीला। कल यानी कि 15 अगस्त को हमारे जो देशवासी है ना, अपनी आजादी का वो दिन मनाएंगे जिसे पाने के लिए बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली।
1: और 15 अगस्त की तैयारियां आज से ही देखने को मिल रही है। अब सड़क पर आइए, देखिए हर जगह दुकानें सजी हुई हैं, कहीं कहीं स्कूल के बच्चे तिरंगा लहराते हुए जा रहे हैं। तो जश्न की तैयारियों के लिए सब तैयार हैं एकजुट होकर।
0: बिल्कुल। और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के आधुनिक भारत तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है। और पिछले वर्षों में विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है।
1: सही कहा आपने, और स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं की बहुत ही अहम ही भूमिका है, क्योंकि देखिए हमारे सामने हम वीर पुरुषों की बात तो करते हैं, लेकिन इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही प्रेरणादायक रहा, है ना?
0: बिल्कुल। जैसे अगर कहा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक बहुआयामी संघर्ष था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, इस संघर्ष में महिलाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो कि धर्म के पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर देश की आजादी के लिए आगे आई।
1: और अगर हम 1857 की बात करें तो सबसे पहले कौन सा नाम याद आता है सुखदा?
0: बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई का।
1: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अद्भुत साहस का परिचय दिया, और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, और अपनी साहस और वीरता के कारण वो आज भी अमर है।
0: बिल्कुल। और 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत है नशीला, उसमें सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों में भी महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, और इन आंदोलनों में महिलाओं को शिक्षा, समानता और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार भी किया।
1: और कुछ महिलाओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जैसे सरोजनी नायडू, जिन्हें हम स्वर कोकिला भी कहते हैं। उन्होंने अपने भाषणों और नेतृत्व के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और देशवासियों को, महिलाओं को, लोगों को आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे नाम है, कस्तूरबा गांधी ने भी सत्याग्रह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्हें हम बा भी कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निडर नेता और समाज सुधारक और सत्याग्रही के रूप में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया।
0: बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने विभिन्न रूपों में योगदान दिया है, चाहे वो प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन हो, शिक्षा का प्रसार हो, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन हो।
1: इसके अलावा बहुत सारी महिला क्रांतिकारी जो सामने न आकर क्रांतिकारियों की मदद करती, उनके लिए भोजन बनाती, उनकी मदद करती, उनमें से एक नाम है दुर्गावती देवी का, जिन्हें हम दुर्गा भाभी भी कहते हैं। और सन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद उन्होंने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की नजरों से बचाकर कलकत्ता मेल से सुरक्षित निकाला था।
0: भाई वाह शीला जी, वैसे भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह की एक सहयोगी और थी, सुखदेव राज और कल्पना दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। प्रीति लता वाडेकर, उन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया था। वहीं अमृता शेरगिल, कमला देवी, चैतन्य ने सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। तो महिलाओं ने साहित्य और पत्रिका के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा भी दिया है।
1: इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सारी महिलाओं ने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही तुलनीय कदम उठाए हैं, जिसमें मैडम भीकाजी कामा, उन्होंने विदेशों में स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में महत्वपूर्ण कार्य किया था।
0: बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं का जो योगदान है किसी विशेष धर्म या जाति तक सीमित नहीं था, सभी धर्मों और

0: जातियों की महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
1: तो हम सब वीरांगनाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब देश को पुकार मिली तो भारत की बेटियां भी पीछे नहीं हटी।

0: गीत को सुन के तो एकदम मन प्रफुल्लित हो गया और लगा कि हम उसी माहौल में ही हैं, है ना शिला?
1: बिल्कुल, देशभक्ति का जो गीत सुन लीजिए तो अपने देश के प्रति एक और ज्यादा, यूं तो सम्मान है ही, और ज्यादा हो जाता है। और देश की उन्नति यही इसी में है कि हम सब एक अच्छे नागरिक बनकर देश के प्रति समर्पित रहें, और देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हम सबको आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। तभी हम अपने घर परिवार का सब सहयोग कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के हित में भी एक सहयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल शीला, कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण को समर्थन देने के लिए सरकार ने जीवन चक्र आधारित नीति अपनाई है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति और नारी शक्ति वंदन अभियान जैसी योजनाओं से महिलाओं को शिक्षा, हुनर, रोजगार और नेतृत्व के अवसर भी मिले हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि सहायता योजनाओं में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिली है। आज महिलाएं पंचायतों से लेकर सेना और अंतरिक्ष अनुसंधान तक हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं।
0: अरे शीला, बातें हम ही लोग करेंगे कि अपनी सखियों को भी इसी चर्चा पर आधारित सुनवा देते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, और वार्ताकार हैं प्रोफेसर कल्पना आनंद।
2: आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना महिलाओं की सक्रिय, समान और सार्थक भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। आत्मनिर्भरता को यदि केवल आर्थिक उत्पादन, औद्योगिक क्षमता अथवा तकनीकी स्वावलंबन तक सीमित कर दिया जाए तो हम इसके व्यापक सामाजिक अर्थ को नजरअंदाज कर देंगे। आत्मनिर्भर भारत वह होगा जिसमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, मानवीय गरिमा, अवसरों की समानता और निर्णय निर्माण में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित हो। भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां यह सिद्ध करती हैं कि अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं। सावित्री बाई फूले, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में बालिकाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और भारत में महिला शिक्षा की मजबूत नींव रखी, पंडिता रमाबाई, जिन्होंने महिलाओं, विशेषकर विधवाओं और वंचित महिलाओं की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने के प्रयास किए। सरोजनी नायडू का जीवन महिला नेतृत्व और राजनीतिक सहभागिता का उदाहरण है। आप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष व स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय राजनीति और शासन में महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता को स्थापित किया है। किरण मजूमदार शॉ, जिन्होंने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बायोकॉन को स्थापित कर यह सिद्ध किया कि भारतीय महिलाएं

विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं। कल्पना चावला का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान भारतीय युवाओं, विशेषकर बालिकाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनका जीवन विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और सपनों को साकार करने की क्षमता का प्रतीक है। टेसी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान एवं मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप एसटीईएम और तकनीकी क्षेत्रों में महिला भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। फाल्गुनी नायर, जिन्होंने डिजिटल उद्यमिता के क्षेत्र में एक सफल भारतीय महिला उद्यमी के रूप में पहचान बनाई। इला भट्ट, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन्स एसोसिएशन के माध्यम से असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया। सुधा मूर्ति ने लेखिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। मेरी कॉम तथा पीवी सिद्धू ने खेलों के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाया। ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि भारतीय महिला केवल विकास की सहभागी नहीं, बल्कि विकास की निर्माता और परिवर्तन की वाहक है। यदि हम वर्तमान भारत की आर्थिक स्थिति को देखें, तो महिलाओं की बढ़ती श्रम भागीदारी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है। पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का श्रम बल भागीदारी दर 40% था, जबकि पुरुषों का 79.1%। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 38.8% रहा। यह आंकड़ा निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण चुनौती की ओर संकेत भी करता है। महिला और पुरुष श्रम भागीदारी के बीच अभी भी पर्याप्त अंतर है। इसलिए भारत की अगली विकास रणनीति का उद्देश्य केवल महिलाओं को रोजगार देना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित, उत्पादक और बेहतर पारिश्रमिक वाले रोजगार से जोड़ना होना चाहिए। यहाँ हमें महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य को भी समझना होगा। बच्चों, वृद्धों, बीमार सदस्यों और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल में महिलाओं का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक पुनरुत्पादन की आधारभूत शक्ति है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आय की पारंपरिक गणनाओं में दिखाई नहीं देता। इसलिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए केवल रोजगार सृजन पर्याप्त नहीं है। केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बच्चों और वृद्धों की देखभाल, सुरक्षित परिवहन, मातृत्व सहयोग और परिवार के भीतर घरेलू कार्य के अधिक समान वितरण की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत में स्वयं सहायता समूहों यानी SHG का विस्तार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं में सामाजिक मोल भाव क्षमता, वित्तीय शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने और सामाजिक पूंजी के रूप में स्वयं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जुलाई 2026 तक स्वयं सहायता समूहों को वितरित कुल ऋण 13.41 लाख करोड़ से अधिक बताया गया है। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि ग्रामीण महिला अब केवल परिवार की उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधि की सक्रिय भागीदार और उद्यमी बन रही है। इसी परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल है लखपति दीदी, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ऐसी स्थायी आजीविका और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे कम से कम 1 लाख की वार्षिक आय अर्जित कर सकें। सरकार ने 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए उद्यमों को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन, बाजार तक पहुंच, क्षमता निर्माण और डिजिटल

0: प्लेटफॉर्म पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यहां भारतीय महिला सशक्तिकरण की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन दिखाई देता है, जो कल्याण से सशक्तिकरण और सशक्तिकरण से महिला उन्मुख विकास की ओर दिखता है। अर्थात महिला को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने के स्थान पर उसे उत्पादक, उद्यमी, अन्वेषक, नियोक्ता, निर्णयकर्ता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाएं कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और स्थायी उद्यमों में सक्रिय योगदान देती हैं। आधुनिक तकनीक के साथ महिलाओं को जोड़ने के प्रयास इस भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और तकनीकी प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को प्रदान करता है। एक शिक्षित महिला केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती, वह मानव पूंजी का निर्माण करती है। एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला केवल अपनी आय नहीं बढ़ाती, वह परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करती है। एक महिला उद्यमी केवल अपना व्यवसाय नहीं चलाती, वह रोजगार और बाजार पैदा करती है। एक महिला वैज्ञानिक केवल अनुसंधान नहीं करती, वह भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और एक महिला नेता केवल स्वयं नेतृत्व नहीं करती, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए नेतृत्व के नए रास्ते खोलती है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण महिलाओं को सशक्त करने से एक कदम आगे की प्रक्रिया है। यह महिलाओं को विकास की निर्णायक शक्ति और नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया है। भारत की आत्मनिर्भरता तभी समावेशी, न्यायपूर्ण और स्थायी होगी जब भारत की महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी करें, अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त करें, तकनीक और वित्त तक पहुंच रखें, संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार प्राप्त करें तथा परिवार से लेकर राष्ट्रीय नीति निर्माण तक निर्णय प्रक्रिया में सार्थक भूमिका निभाएं। सशक्त महिला केवल आत्मनिर्भर परिवार का निर्माण नहीं करती, वह आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र की आधारशिला रखती है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए महिला को लाभार्थी से भागीदार बनाना, भागीदार से उद्यमी बनाना और उद्यमी से नेतृत्वकर्ता बनाना और नेतृत्वकर्ता से राष्ट्र निर्माता बनाना। यही वास्तविक समावेशित महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक पहचान है। धन्यवाद
1: सखियों। अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी प्रोफेसर कल्पना आनंद। और देखिए सुखदा, आत्मनिर्भर होना यानी विकास की ओर अग्रसर होना, और जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। साथ ही हमें अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को आर्थिक रूप से मजबूती का ज्ञान तो देना ही है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना है, उनको नैतिक मूल्यों की जानकारी देना है, नैतिक ज्ञान देना है, जिससे कि वो एक अच्छे और सफल नागरिक बन सकें।
2: बिल्कुल शीला, कहते हैं कि नई पीढ़ी के लिए आज़ादी केवल राजनीतिक या ऐतिहासिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता की भावना, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर भी है।
1: सही कहा आपने सुखदा, भले ही हमारे विचार अलग हैं, लेकिन हम सब एक मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं और स्वतंत्रता के कारण हो रहा है, तो उस आज़ादी को हमें सहेज कर रखना है। नई पीढ़ियों को इस तरह से संदेश देना है कि वो आने वाली दिनों में देश के हित के लिए कार्य कर सके।
2: बिल्कुल, और आज़ादी के 78वें वर्ष का अनुभव और संघर्षों से हमें ये सीखने को मिलता है कि आज़ादी हमें ये याद दिलाती है कि इसे पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। नई पीढ़ी को इस संघर्ष का सम्मान करना चाहिए और इसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्र होने का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी तो है ना।
1: और ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। खासकर युवा पीढ़ी को ये बात भली भांति समझ

0: होगा कि वो आत्मनिर्भर बने और देश की उन्नति में अपना योगदान दे, अपने
1: बिल्कुल
0: कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए।
1: बिल्कुल। और नागरिकों के रूप में लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, ठीक है ना, और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना सीखना भी चाहिए, है ना। और आज़ादी हमें सोचने, निर्णय लेने और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी आज़ादी देती है, और नई पीढ़ी की को शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का पालन करना भी चाहिए, जिससे वो समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सके।
0: और सही कह रही है। देखिए, कोई भी जैसे बंधन हो तो उसमें हम लगता है कि ढंग से सांस नहीं ले पाते, और इस आजादी ने कितनी मुश्किल से कितने लोगों के ने अपने प्राण न्यौछावर किए तब जाके ये आजादी मिली है। तो हम सब 15 अगस्त, 26 जनवरी या जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व पड़ते हैं उसे हम सब मनाते तो हैं, साथ ही हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें। वो 15 अगस्त के दिन हम बच्चों को देखिए स्कूल भेजते हैं तो वो झंडा लेकर जाते हैं और इधर उधर झंडे को न फेंकें, बल्कि 15 अगस्त के बाद झंडे को उठाकर रख दें। अपने झंडे का सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा झंडा हमारी सम्मान है और हमारा गौरव है।
1: बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए शीला जी, तो आज़ादी का महत्व नई पीढ़ी के लिए ये संदेश देता है कि स्वतंत्र होकर जिम्मेदारी, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और देशभक्ति के साथ जीना सीखें। और सच्ची आज़ादी यही है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति संभव होती है।
0: सही कहा आपने। और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दूसरे की भावनाओं का की कद्र करनी चाहिए। और देखिए, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए अगर हम लोग एक कार्य ये भी कर सकते हैं कि सावन का महीना है, पौधारोपण करें, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है। और एक स्वतंत्र राष्ट्र वह है जो अपने भविष्य का निर्माण करते हुए अपने अतीत को भी याद रखता है।
0: सखियों, चलते चलते यही कहेंगे कि आप सभी को आने वाले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता एक विरासत है, इसे गर्व और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। आप सब स्वस्थ रहें और अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।

0: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: चौदह अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं राधे श्याम सोटावाले और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले सुनिए देशभक्ति।

रही रही धा धा कैना रे खूनावा रही रही धा धा कैना तद देखी के ना पाक तोरा गुनावा रे खून।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति, आइए सुनवाते हैं एक और देशभक्ति इन्हीं के स्वर में।

0: देशभक्ति गीत के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार थे राधे श्याम सोटावाले और साथी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे मिड डे न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इंसिडेंस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द करंट मॉनसून सीजन. रितेश कपूर, आकाशवाणी न्यूज, शिमला.
1: In Odisha, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. More from our correspondent.
2: The flood situation on the ground is grim in several parts of northern Odisha. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. The Baitarani is flowing above the danger mark at Anantpur and Patna in Keonzhar district, while the Jalaka at Mathani in Baleswar district is flowing at 7.84 meters against the danger level of 6.50 meters. Flood water has again entered through a breach in the Anantpur ring embankment. Joda and Balwil in Keonzhar district are also waterlogged. In Mayurbhanj, the Budha Balanga has spilled into parts of Baripada, while several roads are underwater. The Subarnarekha and Baitarani rivers are above danger levels. With more rainfall forecast, residents in low-lying and riverbank areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Priyanka Arora. मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी. भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी. और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा. ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे.
4: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रगान होगा. यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे. इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है. इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथि

0: और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, उलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे

0: करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास की सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
3: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ

0: सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे कार्यक्रम में एक ही कलाकार, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: चौदह अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति है शिखा श्रीवास्तव की।

नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी श्रोताओं को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी और मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर शिखा। दोस्तों, आज 14 अगस्त की ये पावन बेला भारतीय संगीत जगत के लिए बेहद गौरवशाली दिन भी है। कल हमारा पूरा देश स्वतंत्रता की वर्षगांठ के उल्लास में डूबा होगा, परंतु आज का ये सुहाना दिन एक ऐसी आवाज को नमन करने का है जिसने भारतीय पार्श्व गायन को एक नई प्रखरता और गरिमा प्रदान की है। जी हाँ, आज जन्मदिन है सुरों की स्वामिनी सुनिधि चौहान जी का। उनकी आवाज में जहाँ एक ओर भारतीय शास्त्रीयता का अनुशासन है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक संगीत की अद्भुत ऊर्जा है। आइए अगले आधे घंटे हम सुनिधि जी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं, उनकी संगीत साधना और उनके कुछ अत्यंत सुमधुर पारिवारिक और कालजयी गीतों के सफर पर चलते हैं। कार्यक्रम एक ही कलाकार की शुरुआत करते हैं। उनके इस खूबसूरत और अत्यंत ही

बहुत ही खूबसूरत। भागे रे मन कहीं में, जिस प्रकार सुनिधि जी ने अपनी आवाज की तरलता को साधा है, वो उनकी असाधारण प्रतिभा का ही प्रमाण है। श्रोताओं, सुनिधि जी की संगीत यात्रा महज 4 वर्ष की अल्पायु में दिल्ली के स्थानीय आयोजनों से शुरू हुई थी। यहाँ एक बेहद दिलचस्प और प्रेरक तथ्य ये है कि सुनिधि जी ने अपने शुरुआती दौर में संगीत की कोई औपचारिक या व्यावसायिक शिक्षा नहीं ली थी। उनके भीतर छुपे इस दिव्य सुर को उनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान जी ने पहचाना था। सुनिधि जी स्वयं बताती हैं कि बचपन में वे किसी गुरु के पास नहीं गईं, बल्कि वे घर पर कैसेट्स और रेडियो चलाकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के गीतों की बारीकियों को सुनती थी और घंटों अकेले रियाज करती थी। वे लता जी के गाए गीतों को ही अपना सबसे बड़ा विद्यालय और उन्हें ही अपना एकलव्य गुरु मानती थी। आइए, संगीत के प्रति उनके इसी समर्पण को दर्शाते हुए उनका ये बेहद सुमधुर गीत सुनते हैं।

कितनी सादगी और कितना ठहराव है इस आवाज में। श्रोताओं, जब सुनिधि जी की इस अद्भुत ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को प्रसिद्ध एंकर तबस्सुम जी ने देखा तो उन्होंने उनके परिवार को मुंबई आने की सलाह दी। मुंबई आने के बाद सुनिधि जी को दिग्गज संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का वरद हस्त मिला। कल्याण जी भाई ने ही उनका नाम निधि से बदलकर सुनिधि रखा और उन्हें अपने लिटिल वंडर्स ग्रुप की मुख्य गायिका बनाया। इसके बाद महज 13 वर्ष की आयु में उन्होंने देश का पहला बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो जीता। इसी पड़ाव पर सुनिधि जी को लगा कि एक मुकम्मल गायिका बनने के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना अनिवार्य है। तब उन्होंने सुप्रसिद्ध संगीत गुरु गौतम मुखर्जी जी से विधिवत और औपचारिक रूप से शास्त्रीय गायन की तालीम लेना शुरू किया। यानी कुदरती हुनर को जब गुरु के ज्ञान का साथ मिला तो सुनिधि चौहान संगीत आकाश का चमकता सितारा बन गईं। आइए सुनते हैं उनकी इसी बहुमुखी गायकी का एक और सुंदर उदाहरण।

कितनी सुंदर प्रस्तुति। दोस्तों, सुनिधि जी की प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रही। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और सुनने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्होंने मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली और गुजराती सहित लगभग 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में हजारों सुपरहिट गीत गाए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बिना किसी शुरुआती भाषाई प्रशिक्षण के भी केवल अपने लगन से उन्होंने हर भाषा के उच्चारण पर बेजोड़ पकड़ बनाई। उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार सहित देश विदेश के अनगिनत सम्मानों से नवाजा गया है। आइए उनकी इस बहुमुखी गायकी को नमन करते हुए प्रेम के सुंदर ताने बाने से बुना हुआ सुमधुर गीत सुनते हैं।

कितने सुंदर शब्द और उससे भी अधिक हृदय स्पर्शी सुनिधि जी का स्वर। दोस्तों, आज के इस आधुनिक और चकाचौंध वाले दौर में भी सुनिधि जी ने अपनी शालीनता, अपने संस्कारों और संगीत के प्रति अपनी शुचिता को हमेशा सर्वोपरि रखा है। वे मानती हैं कि संगीत मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना है। एक महान कलाकार होने के बावजूद उनकी विनम्रता ऐसी है कि वे आज भी हर रिकॉर्डिंग से पहले एक नवोदित शिष्या की तरह रियाज करती हैं। यही कारण है कि A.R. रहमान से लेकर तमाम बड़े संगीतकार उन्हें आधुनिक युग की सबसे अनुशासित और समर्पित गायिका मानते हैं। आइए उनके इसी सुंदर, रूहानी और लोकप्रिय गीत का आनंद लेते हैं।

वास्तव में ऐसी समर्पित आवाज के सामने संगीत प्रेमियों का सर श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाता है। दोस्तों, समय की अपनी सीमाएं होती हैं और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें सुरमई सफर को यहीं विश्राम देना होगा। आज 14 अगस्त को सुनिधि चौहान जी के इस पावन जन्म दिवस पर आकाशवाणी परिवार की ओर से, आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं की ओर से, हम उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर यश की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ईश्वर करे उनकी यह खनकदार और सुमधुर आवाज हमारी पीढ़ियों को यूं ही आनंदित करती रहे। अब अपनी इस दोस्त शिखा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और नमस्कार, अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की सप्रेम शुभकामनाएं। जाते जाते सुनिए सुनिधि जी का ये अत्यंत मधुर और मन को छू लेने वाला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। शाम 5 बजे सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर। साथ ही डीटीएच डीआरए में 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन EIR ऐप और वेव्स ओटीटी पर भी हम आपके लिए उपलब्ध हैं। शाम के 5 बजे हैं आरंभ हो रही है आज की सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है सभा का आरंभिक कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: चौदह अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ था, संगीत सलील चौधरी का था और मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम काबलीवाला। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और गीता दत्त के साथ साथियों की आवाज़ों में फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का। ये गीत संगीत है दत्ताराम का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के अंत में आज के इस कार्यक्रम के आशा भोंसले, गीता दत्त और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं। इस फिल्म से संगीत दत्ताराम का था। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे

0: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश।
1: मेरे बहादुर सैनिक बहनों और भाइयों, हमारा देश कल अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपनी और समस्त भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके त्याग और धैर्य के कारण ही हमारे सैनिक पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा कर पाते हैं। साथियों, आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, रानी गडिनलू और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आजादी के इन 80 वर्षों में जो प्रगति की है वह अपने आप में एक प्रेरक गाथा है, लेकिन यह कहानी तब और सुखद हो जाती है जब हम इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की यात्रा को देखते हैं। साथियों, 1947 से लेकर आज तक हमारे रक्षा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हम सब इसके साक्षी हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपसे उस इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान की और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनमें भी पिछले 12 वर्षों में आप सबने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारे प्रयासों ने रक्षा उत्पादन को नई दिशा दी है, हमने आयात पर अपनी निर्भरता कम की है और स्वदेशी निर्माण को हमने अभूतपूर्व गति प्रदान किया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी पिछले एक दशक में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। यह पिछले एक दशक में हुए स्ट्रक्चरल चेंज का प्रमाण है। इस कुल उत्पादन में रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 76% हिस्सेदारी रही, जबकि निजी क्षेत्र ने 24% का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष के 22% से अधिक है। निजी क्षेत्र की यह बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में

बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बेहतर हो रहा है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रमाण हमारा रक्षा निर्यात है। वर्ष 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट आज वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी लगभग एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने 5,500% से भी अधिक की छलांग लगाई है। आज भारत में 145 डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य जरूर प्राप्त करके रहेंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी ठोस निवेश के संभव नहीं था। हमने रक्षा बजट लगातार बढ़ाया है। हमारा डिफेंस बजट वर्ष 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर 94,588 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमारा फोकस लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जहां 15,283 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह 2026-27 में 90% बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सारे आंकड़े भविष्य की रक्षा तकनीकों में भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शा रही है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इस निवेश का लाभ हमारे पूरे रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को भी मिल रहा है। आज देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 16 सार्वजनिक उपक्रम, 462 लाइसेंसी रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 एमएसएमई रक्षा निर्माण से जुड़ी हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, साथ ही अदिति जैसी योजना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। यह अपने आप में हमारे रक्षा आधुनिकीकरण के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निर्णय हमारे रक्षा क्षेत्र को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी बुनियादी सुधार किए। 2026 में डिफेंस सर्विसेज के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में व्यापक संशोधन कर फील्ड कमांडर्स के अधिकार 100% तक बढ़ा दिए गए। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रियान्वयन तेज होगा और हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशीकरण से जुड़े वित्तीय अधिकार भी दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद को रेवेन्यू रूट के माध्यम से गति मिलेगी। साथियों, हमारी सेनाओं ने बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। वर्ष 2025 और 2026 में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। इस सभी स्वदेशी युद्धपोत हमारी समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप का भी कमीशन होना ऐतिहासिक रहा, जो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट वाला भारत का पहला स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। भारतीय वायुसेना के लिए

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में यलसीए तेजस मेक 1A की तीसरी और HTT-40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है। हाल ही में इस नई फैसिलिटी में बने पहले यलसीए मेक 1A को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी देना भी हमारे इसी रणनीतिक कदम का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की बढ़त को दिखा रहा है। साथियों, हमारी आर्मी को भी अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से T-72 और T-90 टैंक्स के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये अत्याधुनिक माइन क्लियरिंग सिस्टम्स युद्ध के दौरान टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करेंगे, जिससे हमारी आर्मर कोर की मोबिलिटी, सर्विवेबिलिटी और कंबैट इफेक्टिवनेस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथियों, रक्षा क्षेत्र के इस बदलते परिवेश में DRDO और हमारी सेनाओं ने भविष्य की युद्ध तकनीकों में भारत को अग्रणी पायदान पर ला खड़ा किया है। हमने अपनी पहली टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियारों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदलने की क्षमता रखती हैं। MIRV तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने हमारी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को नया आयाम दिया है। इसी क्रम में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रुद्रम-2, एयर टू सरफेस मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल SR और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों ने हमारी मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती दी है। भविष्य की तकनीकों में हमने हाइपरसोनिक क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के 1200 सेकेंड से अधिक के सफल परीक्षण ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एयर डिफेंस में हमारी शक्ति स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से और बढ़ गई है, जिसके सभी सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी हैं। साथियों, आधुनिकीकरण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 125 रणनीतिक आधारभूत संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित किए, जो BRO के इतिहास की सबसे बड़ी एकल उपलब्धि है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बनी 28 सड़कें और 93 पुल हमारी सेनाओं की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो रहा है। हमारे सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव पहले की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर जगह हमारी सेनाएं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती हैं। देश में कहीं भी जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है तो हमारी सेनाएं वहां तुरंत पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती हैं। इसलिए साथियों, हम आधुनिकता या आत्मनिर्भरता के जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक और उनके परिवारजन ही है। हमारी सेनाएं हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। हम अपने वेटरन्स के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों में यक्ष सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बजट में 300% की वृद्धि हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत पिन्यूरी ग्रांट 4000 से बढ़कर 8000 रुपये, एजुकेशन ग्रांट 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये और मैरिज ग्रांट 50000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण

0: निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। 2026 में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट्स ने सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 17 महिला अधिकारियों का यह जत्था साबित करता है कि साहस और नेतृत्व किसी एक जेंडर की सीमा में नहीं बने। हमारी नारी शक्ति की इसी भावना का विस्तार समुद्र प्रदक्षिणा भी है, जहां तीनों सेनाओं का पहला ऑल वेमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ, जिसमें IASV त्रिवेणी पर सवार 9 महिला अधिकारियों ने 314 डेज में 4 महासागरों में 25,500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की। यह अदम्य साहस नारी शक्ति के नए भारत का जीवंत प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के वीर जवानों, सम्मानित पूर्व सैनिकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: कुछ सपने वक्त लेते हैं मगर पूरे ज़रूर होते हैं। कुछ कोशिशें देर से ही सही मगर रंग ज़रूर लाती है। बस खुद पर विश्वास और दिल में उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के सपने कभी बेकार नहीं जाते हैं।
1: दोस्तों, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया है कि हमने जो सोचा है क्या हम उसे सच में कर पाएंगे या नहीं। लेकिन दिल में एक उम्मीद लिए जब हम कुछ कर गुजरने की ठान लेते हैं तो वही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।
0: और बस इसी उम्मीद और हौसले के साथ हम फिर हाजिर हैं आज का शो लेकर, जिसमें आपके साथ है दिव्या।
1: और नेहा,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश की बूंदें मन को खुश कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं? इसकी हर एक बूंद हमारे जीवन और इस पूरी धरती के अस्तित्व के लिए कितनी कीमती हैं।
0: बारिश सिर्फ मौसम को सुहाना नहीं बनाती, बल्कि हमारे खेतों, पेड़ पौधों, नदी और भूजल को भी अपना जीवन देती है। यह पानी हमारे पीने, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करता है। लेकिन आज बढ़ती आबादी और पानी के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कई जगह पर जल संकट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।
1: दोस्तों, बारिश का बहुत सारा पानी बहकर नालियों में चला जाता है और हम उसे बचा नहीं पाते। अगर हम इस पानी को इकट्ठा करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें तो इसे वर्षा जल संचयन कहा जाता है। अब सवाल है कि आखिर वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन का सीधा सा मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करके भविष्य के लिए बचाना। जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी सड़कों और नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता है।

0: अगर हम इसी पानी को किसी टंकी में जमा कर लें या जमीन के अंदर पहुंचने की व्यवस्था करें तो इसके बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। चलिए मान लीजिए आपके घर की छत पर बारिश का पानी गिर रहा है। अगर उस पानी को पाइप के जरिए एक टंकी में जमा कर लिया जाए, तो बाद में इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को पानी देने में, सफाई करने या दूसरे कामों में किया जा सकता है। वही सोखता गड्ढे या रिचार्ज पिट बनाकर बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुँचाया जा सकता है। इससे भूजल का स्तर भी बढ़ने में मदद मिलती है।
0: वर्षा जल संचयन का फायदा केवल पानी बचाने तक सीमित नहीं है, इससे भूजल का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है, पानी की कमी कम होती है और भविष्य के लिए पानी सुरक्षित किया जा सकता है। साथ ही बारिश के पानी की सही प्रबंधन से जल भराव की समस्या को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, पानी की एक एक बूंद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या बड़ी संस्थाओं की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर पानी बचाने में योगदान दे सकता है।
1: हम अपने घरों में पानी की बर्बादी रोक सकते हैं, नल को खुला छोड़ने से बच सकते हैं और बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सार्वजनिक भवनों में भी वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब बारिश हो और पानी की बूंदें आपकी छत या आंगन में गिरे, तो सिर्फ बारिश का आनंद ही ना ले, बल्कि यह भी सोचे कि बूंदों को कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, हम विद्यार्थी के जीवन को अक्सर मेहनत और पढ़ाई का समय माना जाता है। परीक्षा, असाइनमेंट, प्रतियोगिता, परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य की चिंता के बीच में कई बार हम अपने परिवार, दोस्तों, हॉबीज और खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ लगातार पढ़ते रहने से ही सफलता की गारंटी है? शायद नहीं। एक बेहतर और खुशहाल जीवन के लिए पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को भी समय देना उतना ही जरूरी है।
0: सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। अगर हम लगातार कई घंटों तक बिना आराम किए पढ़ते रहें तो हमारा दिमाग थक सकता है और पढ़ाई में मन लगना भी कम हो सकता है। इसलिए पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है।
1: दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया भी हमारे समय का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल देखते देखते आधा घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। इसीलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखें या उसका इस्तेमाल सीमित करना काफ़ी मददगार हो सकता है।
0: इसके अलावा अपनी पसंद के काम के लिए भी समय ज़रूर निकालें। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को संगीत सुनना या किसी को खेलना या घूमना। ऐसे छोटे छोटे कामों में तनाव कम करने और दोबारा ऊर्जा के साथ पढ़ाई करने में मदद करते हैं।
1: नींद को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए ही जरूरी है। देर रात तक पढ़ना हमेशा ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब नहीं होता। कई बार पर्याप्त नींद लेने के बाद हम कम समय में भी ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। दोस्तों, संतुलन का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई कम कर दी जाए।
0: इसका मतलब है कि पढ़ाई, आराम, परिवार, दोस्तों और खुद के लिए सही समय तय किया जाए और हर काम के लिए उचित समय निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों, आपको भी मालूम है कि आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। सुबह उठते ही पढ़ाई, कॉलेज, नौकरी, ऑफिस का काम, मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने कितनी जिम्मेदारियां हमारे सामने होती हैं।
1: इसीलिए कई बार हम अपने काम और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए समय ही निकालना भूल जाते हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत ज़िंदगी वही है जिसमें सफलता के साथ सुकून और जिम्मेदारियों के साथ खुशियाँ भी हो।
0: दोस्तों, जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो सिर्फ 3 रंग नजर नहीं आते, उसमें नजर आता है हमारा इतिहास, हमारे वीरों का बलिदान और एक बेहतर भारत का सपना। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने का नाम नहीं है। देशभक्ति तो उस छोटी सी कोशिश का नाम भी है जो हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अपने काम को पूरी मेहनत से करें, देश की संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद के लिए आगे आएं। यही हमारे भारत का मजबूत बनाता है।
1: जब तिरंगा हमारे घर की छत पर लहराता है, तो वह हमें याद दिलाता है कि हम सब अलग-अलग होकर भी एक देश और एक भावना से जुड़े हुए हैं। हर घर तिरंगा अभियान हमें यही संदेश देता है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे काम और हमारी सोच में भी दिखाई देनी चाहिए। अपने देश को स्वच्छ रखना, ईमानदारी से अपना काम करना, दूसरों की मदद करना और देश की तरक्की में अपना योगदान देना भी सच

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान

0: पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
8: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
9: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
8: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
9: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1 सेवाएं अनेक।
10: कहते हैं कुछ सितारे सिर्फ पर्दे पर चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। सिनेमा के इसी चमकते आसमान का एक ऐसा नाम है दोस्तों, जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस अभिनेता की, जिसने अपने अभिनय, अंदाज और मेहनत से दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाई, किंग खान यानी शाहरुख खान की।
11: दोस्तों 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि टेलीविज़न से की थी। फौजी और सर्कस जैसे धारावाहिकों में काम करने के बाद उन्होंने 1992 में फिल्म दीवाना से बड़े पर्दों पर कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
10: शाहरुख खान ने अपने करियर में रोमांस से लेकर एक्शन और गंभीर भूमिकाओं तक कई तरह के किरदार निभाए। डर और बाजीगर में उनके नकारात्मक किरदारों ने लोगों का ध्यान खींचा, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज ने उन्हें रोमांस का बादशाह बना दिया।
11: इसके बाद दिल से, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, वीर जारा, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टारडम को मजबूत किया। लंबे समय तक फिल्मों से दूरी के बाद शाहरुख ने पठान और जवान के साथ बड़े पर्दों पर शानदार वापसी की। फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि वक्त बदल सकता है, लेकिन एक सच्चे सितारे की चमक कभी कम नहीं होती।
10: शाहरुख खान की खासियत सिर्फ उनका अभिनय नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास और दर्शकों से जुड़ने का अंदाज भी है। शाहरुख खान की फिल्मों की एक खास बात उनका रोमांस और अंदाज है। उनका बाहें फैलाकर खड़े होने का स्टाइल तो जैसे उनकी पहचान ही बन गया। आज भी जब कोई व्यक्ति उसी अंदाज में बाहें फैलाता है तो लोगों को तुरंत शाहरुख खान याद आ जाते हैं। उनका बाहें फैलाने वाला अंदाज आज उनकी पहचान बन चुका है।
11: अभिनय के अलावा शाहरुख खान फिल्म निर्माण और व्यवसाय की दुनिया में भी सक्रिय रहे हैं। वे अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से फिल्मों से जुड़ रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में भी उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अब काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन शाहरुख खान की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, यह कहानी है सपनों को देखने

0: असफलताओं से सीखने और लगातार आगे बढ़ते रहने की। दिल्ली से निकलकर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल होना उनके संघर्ष और आत्मविश्वास को दर्शाता है।
1: शाहरुख ने एक बार कहा था, बड़े सपने देखिए, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी युवाओं को प्रेरित करती है।
0: एक छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाला यह अभिनेता आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म सितारों में गिना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
1: दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूथ डायरी की। तो आज का हमारा हिंदी शब्द है निरूपण, जिसका अर्थ है किसी बात, विषय या विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना या उसका वर्णन करना। दोस्तों, हम इसके वाक्य प्रयोग को कुछ इस तरह समझ सकते हैं, लेखक ने अपनी कहानी में ग्रामीण जीवन का सुंदर निरूपण किया।
0: अब बारी है अंग्रेजी शब्द की, जो है न्यूआंस। न्यूआंस का मतलब होता है कि किसी बात में मौजूद बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर या बारीकी। अगर इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें, शी इज गुड एट अंडरस्टैंडिंग द न्यूआंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस।
1: तो दोस्तों, आज के ये दोनों शब्द अपनी डायरी में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि शब्दावली जितनी बेहतर होगी, हमारी बात रखने का तरीका भी उतना ही प्रभावशाली होगा।

0: दिव्या, कहते हैं ना, इतिहास की तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती हैं, उनके पीछे कई कहानियां, संघर्ष और यादें छिपी होती हैं।
1: बिल्कुल, और 14 अगस्त की तारीख तो हमारे लिए और भी खास है क्योंकि इसके ठीक अगले दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
0: सबसे पहले बात करते हैं 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से अलग होकर पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और 1948 से पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया।
1: 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर जारी किया।
0: 14 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के सम्राट हिरोहितो ने मित्र राष्ट्रों की शर्तें स्वीकार करने और युद्ध समाप्त करने की घोषणा की।
1: और इतना ही नहीं, 14 अगस्त 1935 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पर भी हस्ताक्षर किए थे।
0: दोस्तों, इतनी बातों के बाद अब बारी आ गई है आज के सवाल की, लेकिन उससे पहले जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब और उनके विनर्स के बारे में।
1: दोस्तों, हमारा कल का सवाल था आपसे कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित होगा, जिसका सही जवाब है ग्वालियर।
0: और जिन साथियों ने इसके सही जवाब दिए हैं वे हैं चंदा चंदौली से, रवि मौर्य सेमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब जानते हैं कि आज के सवाल को। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न आपसे ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस संगठन द्वारा तैनात किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में रहा स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस संगठन द्वारा तैनात किया गया है?
1: दोस्तों, जल्दी से भेजिए अपने आंसर्स हमें हमारे युववाणी के इंस्टाग्राम हैंडल youth AIR वाराणसी पेज पर, या फिर आप हमारे मेल कर सकते हैं हमारे मेल ID youth AIR@gmail.com पर।
0: दिव्या, आज का युवा सिर्फ सपने ही नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरे करने के लिए हर दिन नया अवसर भी तलाशता है।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन सही समय पर सही जानकारी मिलना भी उतना ही जरूरी है। कई बार एक छोटी सी सूचना किसी के करियर की दशा बदल देती है।
0: इसी सोच के साथ युवाणी में हम लेकर आते हैं रोजगार सूचना, जहां हम आपको देते हैं रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और नए अवसरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।
1: दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर एसोसिएट के लिए 9,766 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके फॉर्म भरने की शुरुआत 11 अगस्त से ही हो चुकी है और अंतिम तारीख 31 अगस्त तक है।
0: उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए, और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SBI करियर्स ऑफिशियल पर करेंट ओपनिंग पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए सुन लेते हैं एक गाना।

0: और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद है, लेकिन हम अक्सर उसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण।
1: तो सवाल यह है कि आखिर हम ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं?
0: ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सबसे आसान तरीका है दूसरों के बारे में सोचना। अगर हम खुद से बस इतना पूछ ले कि क्या मेरी वजह से किसी दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही, तो बहुत सा अनावश्यक शोर अपने आप कम हो सकता है।
1: तो दोस्तों, शोर कम करें, सुकून बढ़ाएं, अपनी आवाज़ की तरह दूसरों की खामोशी की भी कदर करें। इसी खूबसूरती और जिम्मेदारी भरे संदेश के साथ आज के युववाणी कार्यक्रम को हम यही देते हैं विराम।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत अपने इन दो युवा साथियों, यानी मैं नेहा
1: और मैं दिव्या।
0: नमस्कार।
2: का ये झंडा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारे भारत की शान है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर गर्व से फहराएं हमारा तिरंगा। और हाँ, तिरंगे के साथ अपनी खूबसूरत सेल्फी हर घर तिरंगा .com पोर्टल पर अपलोड करना मत भूलिएगा। आइए देश प्रेम का ये पर्व धूमधाम से मनाएं।

अभी युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। भोजपुरी में समाचार आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से ठीक शाम 6 बजे से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज अब से कुछ देर बाद राष्ट्र के संबोधित करब। राष्ट्रपति का संबोधन संध्या 7 बजे आकाशवाणी के सज्जो राष्ट्रीय चैनलन पर प्रसारित कल जाई। ई दूरदर्शन के सज्जो चैनलन पर हिंदी में प्रसारित हुई, जेकरे बादे एकर अंग्रेजी और संस्करण प्रसारित कल जाई। दूरदर्शन पर हिंदी अंग्रेजी में संबोधन प्रसारण के बादे एकर क्षेत्रीय भाषों में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलन पर कल जाई। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनल पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर बिहने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराई हैं और देश के संबोधित करी हैं।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश आज विभाजन भविष्य का स्मृति दिवस मना रहा हो। ए मौका पर बरिस 1947 के विभाजन के दौरान आपन जान गंवावे वाले आ असहनीय पीड़ा झेले वाले सज्जो लोगिन के याद कल जा रहा बा।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभाजन से प्रभावित सज्जो लोगिन के साहस के याद कैले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी कामना कैले हमें कि ई दिन राष्ट्र में सद्भाव आ भाईचारा के बनावे रखले के हमनी के संकल्प के और यो मजबूत करी। प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एह मौका पर आज लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में शामिल भइले। वहां के विभाजन के त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कैनी। सतही एह त्रासदी का पीड़ा झेले वाले विस्थापित परिवारन के सदस्यन के सम्मानितो कैनी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विभाजन के त्रासदी के इतिहास का काला अध्याय बतौलें।
3: आज पूरा देश 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है।
0: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई गो आयोजन कल जा रहा बा। गोरखपुर के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में ओइजा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ एह मौका पर सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता बनावे रखले का संदेशा देने। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू काल ही विजयवाड़ा आ वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा का शुरुआत कैले। वहां के कहने की यह उड़ान

शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई लोक भाषा कवि गोष्ठी सुनेंगे। प्रतिभागी कवि होंगे ओम प्रकाश यादव, राजलक्ष्मी और राजेंद्र त्रिपाठी। इसके अलावा राम अवध सिंह यादव और साथी के गाए लोकगीत का भी आनंद लिया जा सकता है। फिल्म संगीत शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग और रसमाधुरी कार्यक्रम में रात 8:15 पर सुना जा सकता है। तो ये थे इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। और अब कल दिनांक 15 अगस्त दिन शनिवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आइए सुन लेते हैं।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे से। इसके अलावा रात 10 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण किया जाएगा। इसे लखनऊ केंद्र से हम रिले करेंगे। खेती की बात कार्यक्रम सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता बाद कृषि विकास, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्त संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे 6:10 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दुर्घटना और प्राथमिक उपचार विषय पर डॉक्टर संजय यादव आपको जानकारी देंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण आप सुनेंगे प्रातः 6:40 पर। कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:45 का। मधुरिमा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में राम वृक्ष पटेल और साथी आप कलाकार होंगे, आप प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति गीत, समय होगा प्रातः 9:50 का।

0: हेलो फोन इन फरमाइश, ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे। कल की प्रस्तुति होगी स्वस्ति श्रीवास्तव की कहकशां, दिन में 12 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत करेंगी हरप्रीत कौर। समय रहेगा दिन में 12:30 का। दिन में 12:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शहनाई वादन आप सुनेंगे, कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथी। लोक संगीत का कार्यक्रम दिन में 1:45 पर कलाकार मन्ना लाल यादव और साथी। गीतांजलि आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कल दिनांक 15 अगस्त दिन शनिवार को प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: तीन रंग का ये झंडा नहीं,

0: ये हमारी पहचान है, हमारे भारत की शान है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर गर्व से फहराएं हमारा तिरंगा, और हाँ, तिरंगे के साथ अपनी खूबसूरत सेल्फी harghartiranga.com पोर्टल पर अपलोड करना मत भूलिएगा। आइए देश प्रेम का ये पर्व धूमधाम से मनाएं।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

शोधन कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के। फिल्म सिकंदर आजम का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें थीं, गीत राजेंद्र कृष्ण के थे और संगीत हंसराज बहल का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म वीर ज़ारा का गीत, रचना जावेद अख्तर का है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में वीर ज़ारा का ये रचना आप सुन रहे थे और इसी रचना के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया संस्कृत में समाचार की प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्व संध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः दिल्ल्याः रक्तदुर्गात् स्वातंत्र्य दिवसावसरे राष्ट्रस्य नेतृत्वं करिष्यति। अद्य विभाजन विभीषिका स्मरण दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री च विभाजनस्य समये प्राणत्यागं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयन्ति। भूकंपानन्तरं सहायोद्धारार्थं क्रियमाणान् प्रयत्नान् समर्थनाय भारतं कोलंबिया देशं प्रति 20 मैट्रिक टनमितं सहाय्य सामग्रीणां प्रथमं खण्डं प्रेषयति। अपि च अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी मध्य प्रदेशे, हिमाचल प्रदेशे, झारखण्डे, उत्तर प्रदेशे, उत्तराखण्डे च अत्यधिक वृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। 80तमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं सन्देशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् सम्बोधनं सायं 7 आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च

प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टि भवितुम् असंजय कुमार सामलश्च अन्तर्भवन्ति। पञ्चदश अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय।

0: पंचो राम राम, राम राम हो सुमारू भैया।
1: जीतन भैया रहो को भी राम राम।
0: अरे भैया कहे के हो?
2: हाँ का बोलता बतावा।
0: कि प्लास्टिक हटाई तब तो माटी बचाई।
1: इतना नहीं हो जीतन भैया, हमरो एक सुन ला।
0: का भैया?
1: माटी बचाई तो खेती बचाई।
0: अरे भैया यह नहीं, खेती बचाई तो भविष्य बचाई।
1: बहुत बढ़िया बात है जीतन भैया। आज देखा लोग हमन अपने बचपन में जाए जाए तरकारी खरीदे चाहे कोनो सामान लेवे तो घर से झोरा मिले कपड़ा कर झोरा है। आज भी तरकारी लो जे कुछ बाजार जाए तो झोरा प्लास्टिक थैला के पर विश्वास नहीं है। लेकिन पंच लोग नहीं मानत हुआ वही प्लास्टिक पॉलीथीन का जो लोग जइए तरकारी देता हो है। अरे घर से निकल रहा था कंजरे एक बढ़िया झोरा ले रहा है कि बढ़िया सौदा आएगा उस मन। अब प्लास्टिक की थैली में गिर गल टूट गल है। आज जंत हुआ जब कभी का उपयोग करे ना तो क्या होला पशु चाहिए।
0: अरे देखा उपयोग जो बात कहला है ना कि लोग बाजारे जइहन, देखा फेंका के बात तो फेंका के बात हो, बाजारे जब जालन तो लोग सोचा ना कि भाई प्लास्टिक सस्ता पड़ाला ओके लेके आदमी मन सामान ले लेवाना। लेकिन देखा इतना नहीं भी है, लोग जौन प्लास्टिक ले लेवाना ओमन जैसे कोनो खाए पिए वाला मीठा वाला चीज रख के मतलब इधर उधर जूठा कठा फेंक देवलन तो है जौन अपन बोलता चंगा है ना गैया गऊ तो ऊ जा करके खोजत खोजत जो है कूड़ा में खोजा नहीं तो भाई कुछ खाए पिए वाला मिल जाए।
1: अच्छा, तो है नहीं
0: नहीं और खाए पिए में प्लास्टिक में रह ला जो खाना पीना वाला बेचारी निगल जानी और निगल लेके बाद जानते हैं ये अतड़ी में चल जाला और यह नहीं अतड़ी भी सड़ा दे वाला कोनो कोनो तो पशु के जान जाएगा भी।
1: ये तो बहुत गलत है भाई कि पॉलीथीन का जो थैला कहा ओके न उपयोग करे चाहिए उसे बहुत नुकसान है। खेती किसानी पे भी प्लास्टिक थैला देखा जब पहुंच जाला माटी में जल्दी गली न सड़ी है और वह अपन माटी के प्रदूषित करी है। पशु पे बतीबे कैला है। पानी पर असर कैसे पड़ी हो बता था।
0: पानी पे देखा असर ई पड़ी न जोन डाड़े मेड़े जाला पानी बराबर न है जो नरिया होला ना तो यही में जोन प्लास्टिक लोग फेंक देवलन तो जाके इकट्ठा हो जाला और नाली हो जाला जाम। यह नहीं नदी नाल में अगर कहीं ज्यादा प्लास्टिक फसल बा तो यही से जो है बाढ़ आवे की भी संभावना हो जाला
1: और अपन जो पर्यावरण उते
0: प्रदूषित होबे कराला
1: है। अब हमन के इंसान के जीवन पर भी कुछ बहुत बुरा एकर प्रभाव पड़त है तो कुल मिलाजुला के प्लास्टिक कई बार हमन पंच लोग के तिखार के बतौल ही जा कि प्लास्टिक की थैली कभी उपयोग मत कर जब बड़ी नुकसान दे है भाई जब भी सामान लेवे जा थैला ले ला
0: थैला ले ला भैया
1: है कि नहीं।
0: हाँ अच्छा पुराना कपड़ा जोन हो वो कर भी थैला लोग बनवा सकल
1: जोन हमन का निरखा फटगल पजामा फटगल पैंट फटगल ओकर बहुत बढ़िया बन जाए झोला।
0: अरे भैया बनवा लेबा तो उसे का होला कि अपन घरे का झोला मिल जाए और उसे जोन देखा सब्जी हो चाहे ऐसा चीज हो तो उमन लेके आ सकल।
1: अरे भैया जितन भैया आज पंच लोग के का सुनो बचेती में
0: देखा भैया आज के जोन हमने के बतकही में देखा ना आज का हो ना लोग भाषा कवि गोष्ठी हो
1: तो इमन भैया लोग आयल हुआ
0: देखा इमन प्रतिभागी कवि जो ना हुआ ना भैया तो ओम प्रकाश यादव भैया हुआ ई राजलक्ष्मी दीदी हुन और राजेंद्र त्रिपाठी भी
1: तो सुनवाला
0: इनकर कविता सुना।
3: किसान भैया लोगन आज अपने पंचायती में कवि गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुए जात हो और ई कवि गोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेने बदे जोन प्रतिभागी कवि भैया लोगन बहने लोगन हमरे बीच हैं उनसे आपका परिचय करा दे। सबसे पहले राजलक्ष्मी जी मन वाराणसी से आई हैं हमन के बीच में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश यादव भैया जौनपुर से आपका भी अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत है और राजेंद्र त्रिपाठी भैया आपके लगे आवत है कवि गोष्ठी कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके लल्लू तिवारी भैया भी कहल जाए तो सबसे पहले चलल जाए राजलक्ष्मी बहनी के पास और उनसे सुनल जाए कि आज ई 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर पंच भैया लोगन के बदे का लेके आए।
4: तो सबसे पहले सुनिए सावन का मुक्तक।
5: स्वागत है भैया।
4: कि आवे सावन त लोगवा मचल जाला कि आवे सावन त लोगवा मचल जाला सगरी धरती

0: कि होखे पाथर कलेजा कोई के भले, प्यार बन फाट झरना निकल जाला, बन फाट झरना निकल जाला। और बहुत ही पावन पर्व देश में मनावल जाला, और वही पावन पर्व के लिए आप सभी के बीच कुछ सवैया और मुक्तक।
1: स्वागत है, स्वागत है।

ताने लिखा सब से पहले उठा कलम तू ऊपर हिंदुस्तान लिखा। और देखल जाए एक सवैया

आए भारत के बसिया फसियो पौले जय हिंद सुना था। और देखा जाए एक और सवैया, देश के मोरे भारत इहे सरने ऐला पे बसावल जाला।

0: जाला ये प्राणे से प्यारा तिरंगा ई है झुक पावे नहीं फहरावल जाला।
1: बहुत बढ़िया।
0: और देखा जाए चूंकि सावन का महीना चला था तो सावन में देशभक्ति कजरी आप सभी लोगों के बीच
2: स्वागत स्वागत।

एक पसीना ढर कावे, एक पसीना ढर कावे, एक पसीना ढर कावे, एक पसीना ढर कावे, एक पसीना ढर कावे, लावे सुख व दुख के, हो लावे सुख व दुख के, सहयोग दान लिखा, दूरतन महान लिखाना, हो कलम फिर उठा के, वीरता बखान लिखा, दूरतन महान लिखाना, के होखे बरखा तुषार, या हो जेठ के लुआर, के होके

0: जुटल सेवा में हो, जुटल सेवा में दोनों देके ध्यान लिखा, दूर तन महान लिखा ना हो जुट
1: कि माटी के मोल करी का कोई, यही माटी के बीच छिपी जिनगानी, आ सोना यही अरुचानी, यही सगरी दुनिया जस गावे कहानी, आ देखे लहू थतिया बचली, जुझल नवजवान लुटाई जवानी, तो ओम प्रकाश अबौ इहाँ घरवा पे सुभाष यो झांसी के रानी, घरवा पे सुभाष यो झांसी के रानी, कि लाल लड़ई सीमवा उपरानी, जब बाप के पाग बचाव सेनानी, राखी के लाज रख बीरना नहीं जाई, कबो बीर थाई जवानी, सावन सौख सिंगार तजई, यही देश

0: आजादी का पावन मोर निशानी। पंच लोग एक गीत सुने।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत
2: स्वागत।
0: कि सिरवा पे बांधे अपने कफन पगरिया।

0: आवत बाटे
1: है है।
0: तो याद दियावत बा कुर्बानी आजादी के मोल बतावत बाटे। आ भारत माता के चित्र की ऊपर श्रद्धा के फूल चढ़ावत बाटे।
2: वाह भैया बहुत बढ़िया।
0: तो बालक वृद्ध जवान सब मिली गीत उछाह के गावत बाटे। अबीरन की कुर्बानी की गाथा के छंद में ढाली सुनावत बाटे। त देश से प्रेम बढ़ावे बदे समझावत बाटे जगावत बाटे। अब भारत माता की चित्र की ऊपर श्रद्धा के फूल चढ़ावत बाटे। त गांधी सुभाष या झांसी के रानी कहानी याद दियावत बाटे। मंगल पाड़े अबीर आजाद पटेल के नाव गिनावत बाटे।

रावत बाटे तब बाबू कुंवर सिंह वीर अमर स्वाभिमान के पाठ पढ़ावत बाटे राजगुरु सुखदेव भगत इकबाल के मान बढ़ावत बाटे तो शास्त्री पटेल के त्याग से शौर्य से भी परिचय करवावत बाटे भारत माता की चित्र की ऊपर श्रद्धा के फूल चढ़ावत बाटे और अंत में भैया कि लड़का जवान चाहे खेतीहर किसान होखे सभे आज मिल के स्वतंत्रता मनावता आ गांव हो गिराव चाहे सरकारी ठाव होखे घरे घरे लोग ही तिरंगा फहरावता तो शुभ त्योहार बाटे खुशी भी अपार बाटे एक दूसरा के सभे लेड़ुआ खियावता जाति पाति रिखा के विष बेल काटताटे देश भक्ति ओधी भाईचारा के लगावता देश भक्ति ओधी भाईचारा के लगावता भैया एक पावस गीत

कजरारी अखियन के जादू जैसे छाई बदरिया, कजरारी अखियन के जादू जैसे छाई बदरिया, अब बिरह वियोगिन बिन बालम के।

बिरह वेदना मन में भारी पीरा, जोह बदरा से बालम के पठावे लगली।

देश कठिन बा कैसे कटी रैनिया, पिया बसे परदेश कठिन बा कैसे कटी रैनिया, असुगा बनवलसी या भरमौलसी साजन के सौतिनिया।

गोरी अखिए से सावन बरसावे लगली गोरी। और अंत में मुंह पर कई ए राजा आजा लगली गोहरावे, मुंह पर कई ए राजा।

0: बहुत सुंदर और कितना गहिर बात कह देलन, और हर पक्ष के आप लोगन स्पर्श कर लेलन एक कवितई के माध्यम से। राज लक्ष्मी मिश्रा मन जी वाराणसी से आयल रहलिन हा, ओम प्रकाश यादव जी जौनपुर से आयल रहलन हा, और राजेंद्र त्रिपाठी उर्फ लल्लू तिवारी भैया मिर्जापुर से आयल रहलन हा। आप लोगन का एक पंचायती में कवि गोष्ठी में भाग लेवे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जीतन भैया,
2: हाँ सुमारू भैया,
1: भाई लोक भाषा कवि गोष्ठी देखा बहुत बढ़िया रहल, और प्रतिभागी कवि के नाम बता देते ही कि ओम प्रकाश यादव भैया आलना एक कवि सम्मेलन में, और राजलक्ष्मी आलनी कवि सम्मेलन में, और राजेंद्र त्रिपाठी। तो भैया लोग के बहुत धन्यवाद हो गल। आप पंच लोग जो थी कुछ मन मनसायन हो।
2: हाँ देखा मन मनसायन हो, राम अवध सिंह यादव का और साथी के गौनई हो, तो हूँ सुना पंच लोग भी सुना
1: सुना।

0: कह चिरैया मोर देसवा कहावेला, इ देशभक्ति गीत गाओ तन राम मोहन सिंह यादव उनके साथी भाई।
1: देखा गवन ही तो हो गल, अब काली कार्यक्रम के बारे में भी बता दे बोल जा।
0: बता दे कल बिहने का होई।
1: कल देखा बिहने हुई खेती के बातें 6:05 पे अमन विषय रही देखा स्वतंत्रता बाद कृषि विकास, और जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
0: अगर संजय पंचायती में का हुई
1: देखा संजय के पंचायती में जोन हो बातचीत हुई सब्जी में
0: कल नहीं।
1: अच्छा
0: चश्मा बदल ला भैया 16 तारीख के।
1: अच्छा अच्छा हाँ 16 तारीख के हम तेज चश्मा वो
0: बोला। हाँ, चश्मा पुराना होगा तो बदल ला।
1: हाँ, तो देखा हो 16 तारीख के जोन हो ये बातचीत हुई सब्जी में कटाई करते समय और बाद में कौन कौन बात का ध्यान रखे के चाहिए ये विषय पर डॉक्टर सुधीर सिंह से बताई हैं दिनेश कुमार सिंह भैया।
0: और गौनाई भी हुई।
1: गौनाई भी हुई भैया।
0: अच्छा इतने हो गल भैया 16 तारीख का भी बात बता दे लीजिए। कल भी है कृषि में खेती की बातें वाला बात भी हो गल। अब ये बतावा कि धीरे धीरे धीरे धीरे हैं हम के खेती बाड़ी भी सब खाली सुबह शाम हम के निगरानी करे के है। जब निगरानी करे के है तो जानत हुआ संझा के तरीके से कह रहे अपन खेती चल जाए कैसे कि देखा अंधेरा हो जात भाई तो डाणे पर करके रुना बैठे बाटा कोनो जानवर बैठे बाटा और गोजी जरूर हाथे में रहे ठक ठक ठक
1: भैया डंडा पहना लेके चले अब पूरा ठक ठकाओ चले ताकि कोनो दिक्कत ना हो।
0: हाँ हाँ
1: अब कहा कि देखा खेती बाड़ी भी देखा जरूरी है
0: जरूरी है लेकिन सावधानी भी।

0: जरूरी हो। आ जानतु हुआ जब संझा के दुआरे पर कौन थीसा आग आग जला दे, मच्छर छर न रहे, आए गोरु चौगा के भी ध्यान दे, आ चले के बेला होते तो पंच लोग से आज्ञा मांगल जाए
1: तो ले लेवल जाए
0: तो पंचो राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। कृषि जगत प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह कार्यक्रम न्यूज़ ऑन EIR ऐप DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन EIR ऐप के अलावा वेव्स OTT पर भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: रंग का ये झंडा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारे भारत की शान है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर गर्व से फहराएं हमारा तिरंगा। और हाँ, तिरंगे के साथ अपनी खूबसूरत सेल्फी harghartiranga.com पोर्टल पर अपलोड करना मत भूलिएगा। आइए देश प्रेम का ये पर्व धूमधाम से मनाएं।
0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मास्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मास्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अपना अल्फा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने

छोटे बड़े सभी निवेशक निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से
समावेशी विकास।

किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुच्चय

उचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए है।

हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महा

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का ले संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति

0: ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे।
1: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
1: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: amazonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान केवल एक भारतीय नागरिक की होनी चाहिए।
1: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। ये हमारा एक सामूहिक दायित्व तो बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता है। श्री योगी ने चढ़ावा मामले पर कहा कि SIT की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
0: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक VD सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज

सुनिए, कलाकार के रूप में रजनी मिश्रा को। आपके साथ तबला संगति अंकित कुमार सिंह की है और ऑर्गन पर साथ दे रहे हैं संतोष मौर्या। प्रस्तुत है ये रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार थीं रजनी मिश्रा। आपके साथ तबला संगति अंकित कुमार सिंह की और ऑर्गन पर साथ दे रहे थे संतोष मौर्या। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।
1: तीन रंग का ये झंडा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारे भारत की शान है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर गर्व से फहराएं हमारा तिरंगा। और हाँ, तिरंगे के साथ अपनी खूबसूरत सेल्फी harghartiranga.com पोर्टल पर अपलोड करना मत भूलिएगा। आइए देश प्रेम का ये पर्व धूमधाम से मनाएं।
2: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन

और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

श्रोताओं कार्यक्रम का ये पहला गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था आनंदमठ। संगीत हेमंत कुमार का था और अब आपको सुनवाते हैं रसमाधुरी कार्यक्रम की अगली भेंट। ये गीत आप सुनिए, उससे पहले समय आपको बता दें, रात्रि की 8:22 और 24 सेकंड। कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसमाधुरी, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

शुद्धम फिल्म देश के दुश्मन का ये गीत सुन रहे थे आप। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ें थीं। संगीत सोनिक ओमी का था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रसमाधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर भी।

0: श्रोताओं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम कर्मा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, रचना आनंद बख्शी की थी। कार्यक्रम रसमाधुरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: तीन रंग का ये झंडा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारे भारत की शान है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए अपने घर पर गर्व से फहराएं हमारा तिरंगा। और हाँ, तिरंगे के साथ अपनी खूबसूरत सेल्फी harghartiranga.com पोर्टल पर अपलोड करना मत भूलिएगा। आइए देश प्रेम का ये पर्व धूमधाम से मनाएं।
3: नफरत

श्रोतम फिल्म देश प्रेम का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और रचना आनंद बख्शी की थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाते हैं नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म देशवासी का ये गीत रचना आनंद बख्शी की है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म देशवासी के आज का रसमात्री कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, रिली होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रति

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

0: रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे

0: चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,70,000

0: वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल

0: पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी उड़ीसा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्ण रेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: The MD has today issued an orange warning for Sundargarh, Jharsuguda, Bargarh and Sambalpur and yellow warning for 14 districts. More rain is likely to keep the flood threat alive. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Meanwhile, IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur, Odisha for the next 2 days. The weather agency has forecast a generally cloudy sky with a spell of very light rainfall at a few places in the national capital tomorrow. On to sports. Indian Grandmaster R. Pragyananda bounced back from his previous round defeat to secure a convincing victory over Dutch player Jordan van Foerst in the fourth round of the Sinkfield Cup. The win took Pragyananda's tally to 2.5 points from 4 games, placing him in a share of second position in the 10-player 9-round tournament. Pragyananda had suffered a defeat against Germany's Vincent Kramer in the previous round. His latest victory will boost his confidence and strengthen his bid for a podium finish. On the eve of the Parsi New Year, Navroz, President Draupadi Murmu has extended greetings and best wishes to all people of the Parsi community living in India and abroad. In her message, the President said that Navroz symbolizes new beginnings and renewed hope. President Murmu noted that the festival of joy and harmony reminds all of the values of coexistence and service to humanity. She highlighted that the Parsi community has made significant contributions to the country's development through its spirit of enterprise and philanthropy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India remains fastest growing major economy amid global instability. Addressing the nation on the eve of Independence Day, President Murmu reiterates government's resolve to ensure development reaches every individual. Government taking comprehensive steps to curb use of unfair means in public examinations to safeguard future of students. President calls for responsible use of natural resources for future generations. Nation to celebrate 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to lead the celebrations from the iconic Red Fort. 78 gallantry awards announced for Defence Forces and Central Armed Police Forces personnel. And flood situation remains grim in Odisha due to relentless monsoon spell. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि हर की तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जाम इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आजादी मनाएगा। वजीर आजम ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। मॉनसून की मुसलसल बारिश के बाइस उड़ीसा में सैलाब की सूरतेहाल संगीन बनी हुई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में 2 गुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं।

0: उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन, ताउन, मुजाकरात और वसुधैव कुटुंबकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे, वहां अब जोश व जज्बा नजर आ रहा है।
1: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रभावित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
0: अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबकती इम्तिहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदामात कर रही है।
1: सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
0: मुआशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेन देन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क्यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आजादी की सदसाला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज़्म है कि तरक्की के समरात हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नजरियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने यौम आजादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की तरगीब देता है। मुल्क कल अपना 80वां यौम आजादी मनाने जा रहा है। वजीर आजम मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। वजीर

0: आजम लाल किले की फसीह से कौम से खिताब करेंगे, तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लाल किले पर योम आजादी की तकरीबात के दौरान पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के शानदार विरासत के 150 साल पूरा होने की अजीम तकरीब में 2047 तक विकसित भारत के सफर में युवा शक्ति की तवनाई, उमंगों और अहमताओं को भी उजागर किया जाएगा। इस तकरीब में लड़के और लड़कियां कैडेट समेत बर्री फौज, बहरिया, फजाई फौज और माई भारत वॉलेंटियर्स के 2500 जवान शिरकत करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को लाल किला पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफीद फनकारों, पीएम मुद्रा योजना से मुस्तफीद होने वाली कारोबारी खवातीन, पीएम स्वानिधि के तहत खांचा फरोशों और भारत टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लाल किले पर नस्ब किए गए हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कल यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमात सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी, ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदऊईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यौम आजादी के मौके पर आज रेल भवन के अहाते के अंदर एक तिरंगा रैली की क्यादत की। रेलवे की वजारत ने कहा कि भारतीय रेलवे मुल्कगीर हर घर तिरंगा मुहिम में फाल तौर पर शिरकत कर रही है और पूरी रेलवे तंजीम में हुब्बुल वतनी, कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे की तकरीबात बना रही है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तीसरे मरहले के साथ यकजहती मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर रेल भवन में वसी पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने का भी एहतमाम किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स की मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बाटू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बाटू सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लेफ्टिनेंट कर्नल मानियो फ्रांस पीएफ मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, एसजी कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर एसटीएफ सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। पारसियों के साले नौ नवरोज के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और बैरून मुल्क रहने वाली पारसी बिरादरी के तमाम अफराद को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवरोज नई शुरुआत और नई उम्मीद की अलामत है। सदर जमहूरिया ने वाजे किया कि खुशी और हम आहंगी का ये त्यौहार हम सबको बकाए बाहमी और इंसानियत की अकदार की याद दहानी कराता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IGRMS भोपाल जुनूब वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक अकेडमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की कल राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा यौम आजादी के इस्तकबालिये में नुमाइश की जाएगी। भारतीय रेलवे नन्हे ऑपरेशन फरिश्ते के तहत रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले 65 गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से मिलाया है। ये बच्चे फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर मिले थे। फिरोजपुर डिवीजन ने मुसाफिरों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर कोई बच्चा अकेला, गुमशुदा या अपने खानदान से बिछड़ा हुआ मिले तो फौरी तौर पर RPF या स्टेशन के अमले को इत्तला दें। मुसाफिर बच्चों के हिफाजत के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर भी राब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड VDG का एक रुकन उस वक्त हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया जब आज उधमपुर जिले में एक आपसी झगड़े के बाद उनके साथ ही VDG के एक रुकन ने मुबैना तौर से उन पर फायरिंग कर दी। ये वाकया दूर दराज के पंचेरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब VDG के मेंबरान पुलिस चौकी जा रहे थे। जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि पुलिस की एक टीम ये मालूमात हासिल करने के फौरन बाद جائے

0: वकूअ के लिए रवाना हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुजाहिरीन बुनियादी हकूक, मुबैना हलाकतों के लिए एहतसाब और शहरी आजादी पर मुबैना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस मकबूजा इलाके में जारी गड़बड़ के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस के जरिए तकरीबन 100 अफराद हलाक किए जा चुके हैं। उड़ीसा को मॉनसून की दिक्कतों का मुसलसल सामना है, जहां मूसलाधार बारिश शिमाली अजला में बार बार सैलाब आने का बायस बन रहा है। इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एक महीने में 4 मरतबा आने वाले सैलाब के बायस कई अजला बुरी तरह मुतासर हैं, जबकि बालासोर, भद्रक, क्यूंझर और मयूरभंज शदीद तौर पर मुतासर हुए हैं। मजीद बारिश होने की IMD की पेशगोई के साथ ही 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 30 दिनों में बार बार शदीद सैलाब आने के बाद बेतरंगी जलाका, सुवर्णरेखा, बुधबलंगा और सालंदी नदियां एक बार फिर तुगयानी पर हैं। दरियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि बहुत से गांवों का राबता दूसरे इलाकों से मुनक़ते हो चुका है। मयूरभंज में बुधबलंगा दरिया के पानी की वजह से बेतनती ब्लॉक जेरे आब है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी न्यूज के लिए प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: भारत के महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और उड़ीसा में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद बारिश की पेशगोई की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालबे इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुताल्लिक जामे इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आजादी मनाएगा। वजीर आजम ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ हम आपके लिए उपलब्ध हैं। DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ वेव्स OTT के साथ न्यूज़ ऑन IR ऐप पर भी। रात्रि के 9:30:16 कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत और गज़लों का अंजुमन पेश है। प्रोग्राम की यह है पहली पेशकश। तलत अजीज़ और पीनाज मसानी की आवाज़।

आपसे दोस्ती हो गई है, जिंदगी जिंदगी हो गई है। तलत अज़ीज़ और पीनाज मसानी की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की अगली पेशकश आइए सुनते हैं हम और आप साथ साथ, प्रोग्राम अंजुमन।

श्रोताओं, ये आशा भोंसले की आवाज़ थी और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये रचना नासिर काजमी की थी और अब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश।

श्रोताओं, ये रचना थी मुमताज़ मिर्ज़ा की और आवाज़ चित्रा सिंह की थी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ और सोनाली राठौड़ की आवाज़ ये सुनते हैं। रचना है इसरार अंसारी की।

श्रोताओं, आशा भोसले के गाए इस रचना के साथ ही आज का अंजुमन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, सुबह उठकर चेहरे पर लगाए जाने वाले मॉइस्चराइजर हो या सनस्क्रीन हो या फिर किसी खास मौके पर इस्तेमाल होने वाले सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स, जो आज हमारे दिनचर्या का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम अक्सर किसी उत्पाद की खुशबू, उसकी ब्रांडिंग या उसके विज्ञापनों को देखकर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुंदर सी कांच की शीशियों और आकर्षक ट्यूब्स में जो सौंदर्य प्रसाधन रहते हैं, उनके पीछे का क्या विज्ञान है? इसी विज्ञान को विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह। आप हमारे शहर के, हमारे जनपद के प्रतिष्ठित उदय प्रताप इंटर कॉलेज में रसायन शास्त्र में प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि जैसा कि मैंने बताया कि सौंदर्य प्रसाधन जो आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, वो क्या होते हैं और इनके निर्माण में रसायन विज्ञान की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे पहले अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो बहुत पहले एक चीज और, थोड़ा सा इस टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ आपको इसकी भूमिका की तरफ ले चलता हूं।
0: जी,
1: पहले आपने पिक्चर देखा होगा कि रोटी कपड़ा और मकान आता था, मतलब रोटी कपड़ा और मकान हमको चाहिए। फिर आया कि नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, पानी ज्यादा जरूरी है।
0: जी,
1: फिर इसके बाद आया कि नहीं, पानी भी नहीं
0: जी,
1: अब हमको जो है उससे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा, पानी बगैर मैं कुछ दिन जिंदा रह सकता हूं लेकिन ऑक्सीजन बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, रसायन एक केमिस्ट्री ऐसी चीज है, अगर एक ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हमारी बॉडी के अंदर न हो तो शायद हम एक माइक्रोसेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। ये स्थितियां हैं
0: जी।
1: लेकिन आज के इस युग में जहां पर हमारे युवा

0: अपने शरीर की तरफ, त्वचा की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं
1: जी,
0: खाने पीने को लेकर के हो, चाहे हमारा शरीर कितना ग्लोई ग्लो दिखाई दे रहा हो, कितना उसमें ग्लोसी दिख रहा हो, उसके लिए जितने प्रयास करते हैं उसके लिए तमाम कॉस्मेटिक्स जाकर के ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉस्मेटिक के बारे में बात करूंगा आपसे कि ये सौंदर्य प्रसाधन वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को, हमारे बाल को, हमारे पूरे शरीर को साफ सफाई और सुंदर बनाने में अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसी को लेकर के इसके निर्माण में जो रसायन विज्ञान का काम है वह मुख्य रूप से इस तरह से आता है कि हम इसमें कौन कौन सी चीजों का निर्धारण करें। जैसे हम सबसे पहले यह देखना चाहते हैं कि जो रसायन हम इसमें ले रहे हैं उस त्वचा के लिए, उस शरीर के लिए वह उपयुक्त है अथवा नहीं। जैसे अगर उपयुक्त रसायन नहीं होगा तो निश्चित रूप से शरीर में एलर्जी या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी के क्रम में दूसरी चीज हम उसमें देखते हैं कि इसमें सुगंध प्रदान करने वाली कौन कौन सी चीजें हम ले रहे हैं
1: जी।
0: तो सुगंध प्रदान करने में जिस रसायन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है उसमें एक आता है रसायन है लिनालूल। यह फूल जैसे सुगंध को देता है
1: जी।
0: इसी तरह से है लिमोनीन, यह भी एक अच्छे फ्लेवर के लिए लिया जाता है जिसमें नींबू और संतरे जैसे सुगंध दिखाई देते हैं
1: जी।
0: जेरानियोल है, एक गुलाब जैसी सुगंध को देता है। बेंजिल अल्कोहल है, यह सुगंध के साथ साथ सबसे बड़ा काम इसका यह है कि एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, मतलब कि उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा भी जैसे हमारी महिलाएं हैं वो लिपस्टिक वगैरह का प्रयोग करती हैं
1: जी,
0: तो उस लिपस्टिक को जो प्रयोग करती हैं वो, तो उसमें जो है कई तरह के फ्लेवर जैसे वेनिलिन है जिसमें वेनिला का सुगंध आता है
1: जी,
0: मेथाल और पेपरमिंट है जिसमें ठंडक और पुदीने जैसे स्वाद आते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। सैक्रीन है वो लिपस्टिक में लिया जाता है जो कि हल्की मिठास देता है
1: जी। जी
0: तो ये आपके सुगंध प्रदान करने वाले
1: जी
0: वो हैं।
1: तो अगर हम सौंदर्य प्रसाधनों की बात करें तो हम ये मूलतः ये पाएंगे कि जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं वो ज्यादातर उसके पीछे किसी ना किसी रासायनिक तत्व का योगदान है जो कि हमारे त्वचा को, हमारे बालों को सुंदरता देता है, हमारे बालों को ग्लो करवाता है, हमारे जो त्वचा है उसको ग्लो करता है। यहाँ पे मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जितने भी कॉस्मेटिक उत्पाद हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन जितने भी हैं उनके निर्माण में, क्योंकि ज्यादातर सौंदर्य प्रसाधन जो है वो हमारे चेहरे पे लगाए जाते हैं, त्वचा पे लगाए जाते हैं या फिर बालों को सुंदर बनाने के लिए उसे प्रयोग किया जाता है, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में बालों और त्वचा की संरचना कितनी महत्वपूर्ण है।
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो प्रमुख कारण हैं, नंबर एक जैसे आप कह सकते हैं उपयुक्त उत्पाद का निर्माण
1: जी,
0: जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वह उपयुक्त है कि नहीं है, जैसे हमारी त्वचा और बालों की संरचना कैसी है उसके लिए किस तरह के हमको क्रीम लोशन ये चाहिए वह जरूरी है
1: जी।
0: दूसरा चीज है सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो त्वचा और बालों को नुकसान न पहुंचाए हमको कैसे सुरक्षित रखता हो
1: जी।
0: और उसकी प्रभावशीलता कितनी है, जो हम कॉस्मेटिक जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज हम लगा रहे हैं उसकी प्रभावशीलता कितनी ज्यादा है, हमारे लिए कितना बढ़िया है, यह महत्वपूर्ण कारक है
1: जी।
0: इसके अलावा विभिन्न प्रकार की त्वचा और बालों के लिए अलग अलग उत्पाद हैं, जैसे तेलीय शुष्क संवेदनशील त्वचा तथा रूखे घुंघराले या क्षतिग्रस्त बालों के लिए अलग अलग फार्मूले विकसित हैं
1: जी।
0: किसी के बाल बहुत चिकने हैं तो उसके लिए दूसरे रसायन हैं, किसी के बाल रफ हैं या घुंघराले हैं तो उसके लिए दूसरे तरह के रसायनों का उपयोग किया गया है प्रोडक्ट बनाने के लिए
1: जी।
0: इसी तरह से गुणवत्ता की स्थिरता यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे त्वचा का जो पीएच है वो लगभग 4.5 से 5.5 के बीच में होता है
1: जी।
0: तो हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वह इस स्तर का है कि नहीं, कि उसमें हम वह हमारी त्वचा के लिए फिट बैठ रहा है उस पीएच वैल्यू पे कि नहीं, इसलिए हमको उसके पीएच, नमी और बालों की संरचना को ध्यान में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित व प्रभावी उत्पाद बनाए ऐसा जरूरी है।
1: अच्छा, ये जो मॉइस्चराइजर होते हैं
0: जी
1: और जैसे जो क्रीम होते हैं, जो लोशन होते हैं, ये सब त्वचा को मुलायम करते हैं
0: जी।
1: हमने देखा है कि हम इसको लगाते हैं तो अचानक से बहुत अच्छी फीलिंग आती है।

0: हमारे बहुत अच्छा महसूस होता है हमारे त्वचा को। चाहूंगा हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ये जितने तरह के ये प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए, मॉइस्चराइजर हो गए, क्रीम हो गए, जो लोशन हो गए, ये त्वचा को जो मुलायम बना करके रखते हैं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या है, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में?
1: हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और जो इसके वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले ह्यूमेक्टेंट आता है, इमोलिएंट आता है और एक आता है ओक्लूसिव।
0: जी,
1: जिसमें ह्यूमेक्टेंट जो है इसमें आपका जैसे ग्लिसरीन है, ह्यूलोनिक एसिड है, जो हवा या त्वचा की गहराई से नमी को खींचकर हमारी त्वचा में बनाए रखता है। जैसे
0: अच्छा।
1: हमारी त्वचा में रूखापन न रहे, इसके लिए जो हमारा ये ग्लिसरीन है या हाइलोनिक एसिड है, यह हवा में से नमी को खींचता है, खींचकर हमारे शरीर में बनाए रखता है, जिससे हमारी त्वचा जो है वो मुलायम दिखती रहती है।
0: जी,
1: इसी तरह से एक इसमें रसायनक है इमोलिएंट, जैसे वनस्पति तेल या सिया बटर है, जो त्वचा की सतह को चिकना और मुलायम बनाए रखता है।
0: जी,
1: इसी तरह से आपका जैसे मैंने कहा ओक्लूसिव है, इसमें पेट्रोलियम जेली, वैक्स, ये सब आते हैं जो त्वचा पर सुरक्षात्मक परत बनाकर पानी के वाष्पीकरण को रोकते हैं, ताकि हमारी त्वचा में नमी बनी रहे। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं।
0: जी, जैसे त्वचा की हम जब बात करते हैं, और आम महिलाओं जब अपनी त्वचा के बारे में जब बात करती हैं, तो अक्सर सुनने में ये आता है कि वो एक सनस्क्रीन लगाती हैं कि गर्मी आ रही है या ठंड आ रहा है, धूप में निकलने के पहले वो सनस्क्रीन लगाती हैं। और जब हम सनस्क्रीन के बॉटल को देखते हैं तो उसमें एक जो शब्द मुझे दिखाई देता है वो SPF होता है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा को कैसे, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे कैसे बचाती है, और ये SPF जो है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है।
0: जी,
1: सनस्क्रीन त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है।
0: जी,
1: हमारे जो सूर्य की रोशनी है उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जिन्हें हम यूवी किरणें भी कहते हैं।
0: जी,
1: ये किरणें जब आती हैं और हमारे त्वचा को पेनिट्रेट करती हैं, जिससे हमारी त्वचा में लालपन, चकत्ते पड़ना, झुलस जाना, ये सारे दिक्कतें आती हैं, सनबर्न हो जाना। आपने गर्मियों में देखा होगा कि लोग चलते चलते शाम को घर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि उनकी बांह में, उनके चेहरे पर या पेट पर या कहीं भी लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं, और ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गर्म चीज उस पर डाल दी गई हो और उस पर फफोले जैसे बन जाते हैं।
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा पर अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, ये दो प्रकार की हैं, UVA और UVB, दोनों से हमको सुरक्षा प्रदान करती हैं। कारण क्या है कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है।
0: जी,
1: ये क्या करता है, किरणों को या तो अवशोषित कर लेता है
0: जी,
1: या तो उनको परावर्तित कर देता है
0: जी,
1: या तो फिर उनको स्कैटर्ड कर देता है, बिखेर देता है। जब यह तीनों चीजें करेगा तो यूवी किरणें हमारी त्वचा पर नहीं आ पाएंगी, जिसके कारण हम सनबर्न से या उसके झुलसने से, इन सारी चीजों से आसानी से बच सकते हैं
0: जी।
1: इसका एक दूसरा पार्ट आपने पूछा वो और महत्वपूर्ण है, जिसे हम SPF, इसको अगर फुल फॉर्म इसका कहें तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है
0: जी।
1: यह एक आपका प्रोटेक्टर जो ये बताता है कि सनस्क्रीन यूवी किरणों से त्वचा को कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो महत्व है SPF का, यह सनबर्न से तो बचाता ही है। एक चीज इसमें है कि अधिक SPF, जनरली लोग, हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं कॉस्मेटिक का, तो हमको ये देखना चाहिए कि अधिक SPF सामान्यतः अधिक समय तक सुरक्षा देता है, यदि सही मात्रा में लगाया जाए। सामान्यतः दैनिक उपयोग में हम लोग SPF 30 या अधिक वाला ब्रांड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन अक्सर उपयुक्त माना जाता है, यही लगाते भी।
0: अच्छा, जब हम सौंदर्य प्रसाधनों की हम बात करते हैं तो अगर हम उसके लेबल को पढ़ते हैं तो कई बारी जो है उसमें देखा जाता है कि इसमें विटामिन सी है, इसमें रेटिनॉल ऐसे तत्व मिले हुए रहते हैं, या फिर और भी अन्य उसमें रसायन जो है उसमें मिले रहते हैं। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जैसे विटामिन सी हो गया, हाइलोरोनिक एसिड हो गया, रेटिनॉल, ये सब जो तत्व हैं ये क्यों उन सौंदर्य प्रसाधन में डाले जाते हैं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या है?
1: सबसे पहले हम विटामिन सी की बात करते हैं
0: जी।
1: यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है
0: जी।
1: विटामिन सी जिसे हम, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है
0: जी,
1: यह जो है त्वचा में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है
0: जी।
1: अब आप कह सकते हैं ये फ्री रेडिकल क्या हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल

0: रेडिकल्स और अभी सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। अब इस पर हम ज्यादा इसलिए डिटेल नहीं बता रहे हैं कि हमारे श्रोताओं को वो
1: जी
0: चीजें कम समझ में आएंगी। मैं ये केवल बताता हूं कि फ्री रेडिकल्स जो हैं, जो ये वातावरण में हैं, इनसे जो हमारे शरीर को नुकसान होता है, नुकसान में ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये जो विटामिन सी है, ये क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है।
1: जी
0: जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अस्थायी हो जाते हैं, अस्थायी होकर के एक जगह तक पड़े रहते हैं और हमारी शरीर की त्वचा के अंदर जा करके किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाते। यह विटामिन सी का बहुत बड़ा जो है गुण है। इसके अलावा त्वचा में कोलेजन बनने में मदद करते हैं। कोलेजन का मतलब यह हुआ कि एक अणु को दूसरे अणु से मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, वो बंध जाते हैं, जिससे बंध जाने के कारण नमी जो है वो शरीर से बाहर
1: नहीं
0: नहीं
1: जा
0: जाने
1: पाती।
0: पाती, त्वचा से
1: जी
0: बाहर नहीं जाने पाती। इस तरह हमारा चेहरा जो है वो अधिक कसी और लचीला दिखाई देता है। और काले धब्बों में पिगमेंटेशन को कम करने के लिए और रंगत को निखारने के लिए भी हम विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो आपने इसी में जोड़ा कि हाइलुरोनिक अम्ल क्या है और इसका क्या उपयोग है,
1: जी
0: तो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो त्वचा में पहले से ही मौजूद रहता है। यह अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी शोषित कर सकता है, इसीलिए त्वचा को गहराई से यह नमी प्रदान करता है। इसी में रेटिनॉल का आपने किया है कि रेटिनॉल या विटामिन ए का एक रासायनिक नाम है। यह त्वचा की नई कोशिकाओं के निर्माण में गति बढ़ाता है, साथ ही मुहासों को कम करने, पोर्स जो रोम छिद्र होते हैं उनको साफ करने में सहायक होता है।
1: अच्छा, यहाँ तक तो चर्चा त्वचा को लेकर के हुई। अब हम आते हैं बालों पर। जब हम बालों की बात करते हैं तो बालों की साफ सफाई को लेकर के बात करते हैं। बालों को हम कैसे बेहतर बना के रख सकते हैं उसकी जब हम बात करते हैं, तो हम सीधा सीधी बात करते हैं कि शैम्पू और हम बात करते हैं कंडीशनर की। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो शैम्पू हैं और जो कंडीशनर हैं वो बालों की सफाई और सुरक्षा में किस प्रकार वो मदद करते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही बालों की स्वच्छता व देखभाल में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं।
1: जी
0: शैम्पू का कार्य मुख्य रूप से बालों से गंदगी, तेल व उत्पादों के अवशोषों को हटाना है ताकि बाल साफ हो जाएं। इसमें जो प्रमुख रसायन पाया जाता है उसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। लेकिन कंडीशनर जो होता है
1: जी
0: इसमें सिलिकॉन, इसमें जैसे डायोमेथिकॉन, कैटायनिक कंडीशनिंग एजेंट पाए जाते हैं। कंडीशनर का काम बालों को नमी बनाए रखना, उन्हें मुलायम बनाना व उलझन को कम करना ये शामिल है। कंडीशनर बालों की सतह को चिकना, मुलायम और चमकदार कर उन्हें अधिक स्वस्थ दिखाते हैं, इनकी अपेक्षा में शैम्पू उतना अच्छा कार्य नहीं करता।
1: अच्छा, जब हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एक कोई सौंदर्य प्रसाधन है उसके प्रयोग से किसी को एलर्जी हो गई, या फिर ये कहा जाता है कि पहले स्किन में कहीं और लगा करके देख लें और देख लें कि वो आपको उससे एलर्जी तो नहीं है। तो ये जो एलर्जी होती है, जो त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को।
0: इसके कई कारण हैं सर।
1: जी
0: एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो रसायन हैं उसमें आपके कुछ त्वचा सुगंध, परिरक्षक जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, डाइज हैं या अन्य रसायन के प्रति संवेदनशील हैं, जिसमें खुजली, जलन, चकत्ते हो सकते हैं। चकत्ते का मतलब लालिमा से है, हो सकते हैं। दूसरा, आपका संवेदनशील त्वचा अगर किसी की है तो जिन लोगों के साथ इस तरह की त्वचा है स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होती है, उन्हें सामान्य कॉस्मेटिक भी प्रतिक्रिया कर देता है। तीसरी चीज, अधिक या गलत तरीके से उपयोग। अगर हम ज्यादा लगा ले रहे हैं या उनका लगाने का जो तरीका है वो हमको नहीं मालूम है, तो इससे प्राकृतिक सुरक्षा परत प्रभावित हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये जरूर देख लें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। होता क्या है, दुकानदार रखे रहते हैं सामान बेचने के लिए, हम पहुंचे और हमने कहा, उन्होंने सामान दे दिया, हमने उनको एमआरपी देख ली, उस हिसाब से उनको पैसा दिया और चले आए। एमआरपी बाद में देखें, एक्सपायरी डेट पहले देखें। अगर वो एक्सपायरी डेट की है तो निश्चित आपकी त्वचा को प्रभावित करेगी।
1: जी, निसंदेह ही जितना भी आपने बताया, जो सौंदर्य प्रसाधन है वो हम अपने बालों में लगाते हैं, हम अपने त्वचा में लगाते हैं, और इनका हमारे ऊपर प्रभाव जो है वो अच्छा ही होना चाहिए, इसका कोई बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। तो बाजार में जो उपलब्ध जो उत्पाद है हमारे अभी, उनकी गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से परीक्षण जो है वो किए जाते हैं इन सौंदर्य प्रसाधनों के, आप इसके बारे में बताएं।
0: ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि परीक्षण के बाद ही सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को अगर

0: लगाएं
1: जी
0: तो हमारे शरीर के लिए शायद सबसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, और अच्छा तो होता ही है।
1: जी
0: सबसे पहले इसमें भौतिक परीक्षण, जिसको हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं, इसमें हम उनकी रंग, गंध, बनावट और पीएच की जांच, कि शरीर की त्वचा का जो पीएच है वो लगभग 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। इसलिए हमारी जो कॉस्मेटिक है उसका भी पीएच लगभग ये होना चाहिए ताकि वो हमारी त्वचा के लिए सूट करता हो। तो हम पीएच की जांच करें, और यह पीएच की जांच दो तरीके से होती है, एक लिटमस पेपर के द्वारा और एक डिजिटल पीएच मीटर के द्वारा। दूसरा है रासायनिक परीक्षण, उत्पाद में मौजूद रसायनों की मात्रा, शुद्धता व हानिकारक पदार्थ, जैसे भारी धातुएं, भारी धातुएं का मतलब ये हम कह सकते हैं जैसे इसमें सीसा पाया जाता है, मरकरी पाई जाती है, और आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं कॉस्मेटिक के सामानों में, तो इनकी मात्रा बहुत सीमित है और सुरक्षित होनी चाहिए त्वचा के लिए
1: जी।
0: तीसरी चीज माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है, इसको हम सूक्ष्म जीव परीक्षण कहते हैं। इसमें उत्पाद में हानिकारक बैक्टीरिया, फफूंद या अन्य सूक्ष्म जीव की जांच होती है कि वो तो नहीं पाए जा रहे हैं
1: जी।
0: फिर है स्टेबिलिटी टेस्ट, प्रकाश व आर्द्रता में उत्पाद की गुणवत्ता कितने समय तक बनी रहती है यह उसकी जांच करते हैं। इसी तरह से है त्वचा सुरक्षा परीक्षण, एक टेस्ट इसमें जो है जिसे हम पैच टेस्ट कहते हैं, जिसका आपने खुद एक बार प्रयोग किया कि हम थोड़ा सा लगा के पहले चेक करते हैं, तो पैच टेस्ट यही है, थोड़ा सा पदार्थ लेके हम अपने कान के पीछे हल्का से लगा लें और कुछ देर देख लें, अगर उससे मुझे कहीं एलर्जी हो रही है तो फिर उसका प्रयोग न करें, यही पैच टेस्ट कहलाता है। या कोई भी हम सौंदर्य प्रसाधन की चीजें उपयोग में ला रहे हैं तो इसको जरूर करें, पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। और अंत में एक टेस्ट है जिसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, इससे हम यह जानना चाहते हैं कि हम जो चीज ले रहे हैं वो जो दावा कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से सही उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है
1: जी। निसंदेही सौंदर्य प्रसाधन जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, और इसके पीछे का जो रसायन है वो उतना ही वृहद है, और ये हमारे जीवन को और हमारे त्वचा है और हमारे जो बाल हैं और हमारे जो बाहरी निखार है उसको ये बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कुल मिलाकर इसके पीछे एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो कि हमारे त्वचा को और हमारे बालों को सुरक्षित रखती है और हमें सुंदरता प्रदान करती है। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का रसायन शास्त्र क्या है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, आज जब हम सुबह सोकर उठते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ते विमान और कारखानों से निकलता धुआं, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से भाग रही है। लेकिन इस भागती हुई दुनिया की नस नस में जो रस दौड़ रहा है, जो ऊर्जा दौड़ रही है, वह मुख्य रूप से आता है पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसी चीजों से, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सीने में छिपा यह खजाना हमेशा तो नहीं रहेगा? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस रफ्तार से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अगले कुछ दशकों में ये पारंपरिक स्रोत खत्म होने लगेंगे, साथ ही इनसे होने वाले प्रदूषण के कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है, कल क्या होगा? क्या हमारी तरक्की का पहिया थम जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है। भविष्य के ईंधन, आज हम जानेंगे कि आने वाले कल में हमारी गाड़ियां, हमारे जहाज और हमारे उद्योग किस ऊर्जा से चलेंगे, वे ईंधन कैसे तैयार होते हैं और कैसे काम करते हैं। श्रोताओं, जब हम भविष्य के ईंधन की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से तीन बड़े नाम आते हैं, पहला हाइड्रोजन ईंधन, दूसरा बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन और तीसरा सिंथेटिक यानी ई फ्यूल्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, ग्रीन हाइड्रोजन। श्रोताओं, हाइड्रोजन अपने आप में कोई स्वतंत्र ईंधन के रूप में खदानों में नहीं मिलता, इसे दूसरी चीजों से अलग करना पड़ता है। जब हम पानी में से बिजली गुजारकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को जल अपघटन कहा जाता है। यह काम कैसे करता है? हाइड्रोजन से

ऊर्जा दो तरह से ली जाती है। पहला, इसे सीधे इंजनों में जलाकर। दूसरा, सबसे आधुनिक तरीका है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक तरह का उपकरण है जिसे हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया से सीधे बिजली पैदा होती है जिससे गाड़ी की मोटर चलती है। और हम जानते हैं कि इसके धुएं के रूप में साइलेंसर से क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी की भाप, कोई प्रदूषण नहीं। अब बात करते हैं उस ईंधन की जो हमारे खेतों से आता है, बायोफ्यूल यानी जैविक स्रोतों से मिलने वाला ईंधन। इसमें सबसे प्रमुख है एथेनॉल। यह कैसे तैयार होता है? एथेनॉल मूल रूप से एक प्रकार का अल्कोहल है। इसे गन्ने के रस, मक्के, सड़े हुए अनाज या कृषि अवशेषों को सड़ाकर यानी किण्वन की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे रिफाइन करके शुद्ध किया जाता है। इसी तरह बायोडीजल को रतन जोत जैसे तिलहन पौधों के बीजों से निकाला जाता है। यह काम कैसे करता है? वर्तमान में एथेनॉल को सीधे हमारे मौजूदा पेट्रोल में मिलाया जा रहा है जिसे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। भारत में अब 20% तक एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल किया है। जब यह इंजन के अंदर जाता है तो यह पेट्रोल की तरह ही प्लग की चिंगारी से जलता है, लेकिन पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें बहुत कम निकलती हैं। सिंथेटिक ईंधन या ई फ्यूल्स। श्रोताओं, एक जादुई तकनीकी पर काम चल रहा है जिसे हम इलेक्ट्रो फ्यूल्स या ई फ्यूल्स कहते हैं। मान लीजिए कि हम हवा में मौजूद प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फैक्ट्रियों की चिमनियों या सीधे वायुमंडल से सोख लें। यह तैयार कैसे होता है? सबसे पहले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, फिर पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। इसके बाद औद्योगिक प्लांट में एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में जोड़ा जाता है। इससे एक ऐसा तरल हाइड्रोकार्बन तैयार होता है जो हूबहू आज के पेट्रोल, डीजल या जेट ईंधन जैसा होता है। यह काम कैसे करता है? इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके लिए हमें गाड़ियों के इंजन बदलने की जरूरत नहीं है। यह आज के ही इंजनों में सीधे डाला जा सकता है। जब यह जलता है तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जितनी इसे बनने के लिए हवा से सोखी गई थी। यानी पर्यावरण के नजरिए से यह कार्बन न्यूट्रल होता है। विशेषकर हवाई जहाजों और बड़े समुद्री जहाजों के लिए यह भविष्य का सबसे व्यवहारिक ईंधन माना जा रहा है। श्रोताओं, जब हम भविष्य के परिवहन की बात करते हैं तो जो क्रांति आज हमारे सामने सड़कों पर दिख रही है वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां। ईवी में कोई पारंपरिक इंजन नहीं होता, कोई साइलेंसर नहीं होता। इसमें होती है एक ताकतवर मोटर और उसे ऊर्जा देने वाली एक बड़ी सी बैटरी। आइए आज बहुत सी सरल शब्दों में समझते हैं कि इन गाड़ियों में लगी बैटरियां आखिरकार काम कैसे करती हैं। आजकल की लगभग सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। यह वही तकनीकी है जो आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में होती है, बस कार या स्कूटर में। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं। एनोड या बैटरी का निगेटिव सिरा होता है जो आमतौर पर ग्रेफाइट से बना होता है। कैथोड या बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है जिसमें लिथियम और अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। इलेक्ट्रोलाइट या इन दोनों सिरों के बीच भरा हुआ एक तरल या जेल जैसा रासायनिक माध्यम होता है जिसमें से होकर लिथियम के कण यात्रा करते हैं। यह काम कैसे करती है? इसे आप एक बहुत ही सुंदर खेल की तरह समझ सकते हैं। यहाँ लिथियम के छोटे छोटे आयन दोनों सिरों के बीच दौड़ लगाते हैं। जब आप ईवी गाड़ी चलाते हैं तो एनोड पर जमा लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के रास्ते से होते हुए कैथोड की तरफ भागने लगते हैं। जब ये आयन अंदरूनी रास्ते से जाते हैं तो उसी समय बैटरी के बाहरी सर्किट से
इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के इसी बहाव को हम बिजली या विद्युत धारा कहते हैं। यही बिजली गाड़ी की मोटर तक पहुंचती है, मोटर घूमती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। जब आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी दिशा में काम कर

करने लगती है। चार्जर से आने वाली बिजली कैथोड पर बैठे लिथियम आयनों को धक्का देती हैं और वे वापस इलेक्ट्रोलाइट के रास्ते तैरते हुए एनोड पर जाकर जमा हो जाते हैं। जब बैटरी फिर से अपनी ऊर्जा को समेटकर तैयार हो चुकी है, इसके पीछे एक BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक छोटा कंप्यूटर भी काम करता है जो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। श्रोताओं, आज हमने जाना कि कैसे पानी से निकलने वाले हाइड्रोजन, खेतों से पैदा होने वाला एथेनॉल, हवा से सोखी गई कार्बन डाइऑक्साइड और लिथियम के छोटे छोटे आयनों की हलचल, ये सब मिलाकर हमारे कल की दुनिया को रफ्तार देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन योजना जैसी नीतियों के माध्यम से बहुत तेजी से काम कर रही है। बदलाव की यह बयार सिर्फ तकनीकी तक सीमित नहीं है, यह हमारी इस धरती माँ को बचाने का एक संकल्प भी है। जब हम इन प्रदूषण मुक्त ईंधनों को अपनाएंगे तो हमारे शहरों की हवा साफ होगी, नीले आसमान में शुद्धता होगी और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। भविष्य का यह ईंधन सिर्फ हमारी गाड़ियों की टंकी नहीं भरेगा, बल्कि यह हमारे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर कल की नींव भी रखेगा।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गायन। कलाकार हैं आदित्य विजय भंडारी, राग है मेघ मल्हार। आपके साथ तबला संगति पीयूष कुमार की है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गायन सुन रहे थे। राग था मेघ मल्हार, कलाकार थे आदित्य विजय भंडारी। आपके साथ तबला संगति पीयूष कुमार की थी। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़। वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया हिंदी में समाचार की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।